नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं।

ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है

0: है मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

Kecak kecuta, jumjak jumjum, kecak kecuta,

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6
1: Mirchi 1. It's hot.

गुड मॉर्निंग तो आपकी हो गई है, लेकिन कोई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, नमस्ते सत श्री अकाल वणकम अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सोचा कि सुबह सुबह के एक अच्छी पॉजिटिव कहानी के साथ में क्यों ना शुरू करें हमारा दिन। एंड इट्स नॉट प्रीची, और ज्ञान देने का कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, बस कहीं ना कहीं मम्मी की कुछ बातें होती है ना मुझे याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर मम्मी जो होती है ना कुछ सीख ना अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताती है। जैसे बचपन में मैं जब छोटी थी एंड आई यूज टू I was playing with a doll or some एक toy था जिसमें batteries की ज़रूरत थी, और जहाँ पर me the curious little Afreen a 6 year old battery को positive और negative side समझने की कोशिश कर रही थी, and I was trying to put that battery in a toy। तो बस मम्मी ने तभी एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे समझाई थी, और मुझे वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रही है, जो कुछ इस तरह से है कि बैटरी में अक्सर आप देखते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। और ऐसे ही शी एक्सप्लेन इट टू मी कि यार इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है आफरीन, कि हर कोई चीज़ चलाने के लिए आपको वो बैटरी में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, नेगेटिव्स एज वेल पॉजिटिव्स एज वेल। वैसे ही इंसानों में भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अब ये अपने ऊपर है आफरीन कि किस तरह से तुम्हें वो इंसान को देखना है। कभी कभार होता है कि किसी इंसान के सिर्फ नेगेटिव साइंस हमारे सामने दिख कर आते हैं, उभर कर आते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गलत है, नहीं, हर एक इंसान में पॉजिटिव साइड भी होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ की पॉजिटिविटी इज़ ऑल अबाउट। कि भाई लोगों को नज़रिए से जब देखते हैं एक अच्छे नज़रिए से, तब हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है और ज़िंदगी इस तरह से आसान लगने लगती है। बस मम्मी की ये छोटी सी बात सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर कि ये बात आपको भी कहीं ना कहीं याद जरूर आएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Yabana. Burka, burka. La vieja la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
2: मैं।
3: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है,
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
2: Talking about?
3: और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ। Who are you?
3: सर मनीष।
2: Who are you?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। How dare you call me?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीडी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मुलाकात शाम को नहीं लेकिन हर सुबह में हो ही जाती है हमारी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और चलिए दिन को आगे बढ़ाने से पहले हमारा यूजुअल देख लेते हैं, यानी वेदर का हालचाल देख लेते हैं। यहाँ पर
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल वेदर ये कहता है आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है काफी ज्यादा है, 43 डिग्री सेल्सियस। बैक टू द होल थिंग यार, 31 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है अभी महसूस जो हो रहा है आपको, 38% अराउंड हो रहा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चल रही है, 70% पर चल रही है, और हवाओं की तो बात ही ना करे बिकॉज वो है ही नहीं जैसे हवाओं में मौसम में यहाँ पर। सो वेल स्पीकिंग अबाउट द वेदर, 15 तारीख एग्जैक्टली आधा हमारा महीना गुजर चुका है एंड वी स्टार्टेड दिस मंथ विद क्वाइट सम एक्साइटमेंट। मतलब ऑनेस्टली जब वो पहला हफ्ता था ना सितंबर का, वी डिड फील सम चेंज एंड देन सडनली मौसम है भाई, सरप्राइजेस तो देते ही रहता है, एंड देन सडनली वी कुड फील द हीट अगेन एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस होपिंग कि भाई ये हफ्ता बस ऐसे निकल जाए और वीकेंड के बाद ना अपने आप मौसम में ऐसे चेंजेस आए दैट वी विल बी एबल टू एंजॉय द आउटडोर्स, है ना। चलिए खूबसूरत से गाने के साथ जब दिन की शुरुआत करेंगे ना तो ये सब छोटी मोटी चीजें ना नजरअंदाज हो जाती है, जैसे अदनान साहब की आवाज में साथिया का ये गाना, व्हाट अ सॉन्ग यार। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, माइक सजल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में. है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's out.
0: Hollywood Bowl Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिजा मूवी का ये गाना है. लेट मी टेल यू यार, मुझे इस मूवी में ऋतिक रोशन बहुत ही क्यूट और हैंडसम लगे थे कि नहीं. एंड करिश्मा कपूर इक्वली वाज लुकिंग सो स्टनिंग यार. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ. और कुछ महीने नहीं बोल सकती हूँ, इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले ही हम यहाँ पर बैक टू स्कूल की एक्साइटमेंट कर रहे थे. एंड क्योंकि अब स्कूल शुरू हो गई है, वी आर ऑलरेडी इन द फेज ऑफ बैक टू एग्जाम्स. यस, कुछ स्कूल्स जो है, इंडियन स्कूल्स की अगर बात करें तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अब ऑन द वे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे. इफ एनी वन लिसनिंग टू मी राइट नाउ एंड इफ यू आर गोइंग टू अपियर अभी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट. और वो लोगों के लिए भी जो अब से मेरे ख्याल से एक हफ्ते में आपके भी एग्जाम्स आ रहे होंगे, ऐसी कुछ सिलसिला है सब जगह. एंड जहाँ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स ना, आई वॉन्ट टू जस्ट कनेक्ट विथ ऑल द अडल्ट्स आउट देयर, पेरेंट्स एंड ऑल द अडल्ट्स लिसनिंग टू मी, कि पहले जब आप छोटे थे ना और एग्जाम्स पर जाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ एक रिचुअल होती थी या फिर एक बिलीफ या सुपरस्टिशन कभी होता था कि मैं ना मेरे ये लकी पेन से लिखूंगा ना तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा. और फिर मम्मी का घर से निकलते वक्त किसी के यहाँ पर दही चीनी के खिलाना, ये बहुत ही ज़्यादा ये माना जाता था, शुभ माना जाता है. एंड देन देर आर समथिंग ऑन द अदर एग्जाम के वक्त कि यार कुछ एक रिचुअल होता है या कुछ एक बिलीफ होती है हमारी कि हम ये करेंगे ना तो हमारा आज का दिन अच्छा जाएगा या आज हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा. सो व्हाट इज दैट वन थिंग फॉर यू? 5000196 इज माय नंबर. एंड लेट मी टेल यू माइन, मैं क्या करती थी, मैं ना मेरे फेवरेट कलर के कपड़े या कुछ इस तरह से, आई यूज टू इफ इन कॉलेज आई यूज टू डू दैट. और स्कूल में तो ऐसा आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन यस बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे जो कुछ ना कुछ अलग करते थे कि हाँ हमारा एग्जाम ना अच्छा जाए उसके लिए. आई वॉन्ट नो योर्स. 5000196 व्हाट्सएप नंबर है. एंड ऑल द किड्स आउट देयर ऑल द बेस्ट एंड रॉकेट. चलिए मीनवाइल आगे बढ़ते हुए अगले गाने की तरफ. सचिन टंडन परंपरा टंडन स्टीवन मिन की आवाज में. What a song, yeah. Enjoy it right here on Mirchi. Mike Siddhil Tagafreen ke saath. It's hot.

Mix, Mirchi. Well, next track जो है वो हमारे 90s से जुड़ा हुआ है और वो आवाज जो 90s के बहुत सारी memories में गिने जाते हैं, and that is KK की आवाज में ये गाना, आपकी दुआ, coming up next on Mirchi. Enjoy.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ, प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर रस्ताना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: देखो भाई, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, आई एम श्योर उधर भी हो रहा होगा जब अपना 90s के गाने सुनते हैं, और स्पेशली अब जब कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ऐसे गाने हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:03 की तरफ। और अगला गाना जो है रोमी और श्रेया घोषाल की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट, एंड तुरंत उसके बाद एक ऐसी अपडेट लेकर आ रही हूँ जो आपके ट्रैवल को थोड़ा और एक स्टेप आगे कन्वीनियंट बना सकती है। You got to stay tuned with me. That is simply Afreen on Mirchi. It's hot.
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: वेल, एयरपोर्ट पर आपका ट्रैवल जो है थोड़ा और कन्वीनियंट होने जा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ऐसा कई बार होता है ना कि आप एयरपोर्ट पर पासपोर्ट और बोर्डिंग पास जो होता है वो बार बार निकालते रहते हो, बट अब ये जो सिलसिला है थोड़ा सा कम हो सकता है, वो भी आपके फेस के वजह से। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल?
1: क्या खबर कदर?
0: तो ये खबर ऐसी है कि फास्ट पास फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस एट HIA इन पार्टनरशिप विद कतर एयरवेज ये शुरू हो रही है। यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू रजिस्टर योर फेस इज सिक्योर linked to your travel details and at selected airport touch points. आप बस कैमरा में देख सकते हो instead of repeatedly presenting your boarding pass. अब देखिए, currently it's available for Qatar Airways passengers on eligible flights. आपने 18 और अबाव होना चाहिए, valid passport के साथ में, and your journey has to start from Doha. Registration भी काफी simple है, Qatar Airways app से register कर सकते हैं, which is basically one time setup है for future eligible trips as well. और HIA में यानी airport पर आप रो 3 के सेल्फ सर्विस कियोस्क पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। कियोस्क रजिस्ट्रेशन दो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप ओनली, ठीक है। फास्ट पास कैन देन बी यूज्ड एट सिलेक्टेड प्लेसेस, जैसे सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप्स है वहां पर आप ये यूज हो सकता है, डेडिकेटेड सिक्योरिटी गेट्स 9 and 10 पर, एंड ऑल्सो द बोर्डिंग गेट्स। एंड अगर प्राइवेसी को लेकर अगर क्वेश्चन है तो कियोस्क से रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डेटा जो है इज डिलीटेड 24 hours आफ्टर योर फ्लाइट डिपार्ट्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि फास्ट पास जो है इसका मतलब ये नहीं कि पासपोर्ट आपने कहीं भूल दिया छोड़ दिया, वो हमेशा से एक रहता है ना टेंशन। हम जब भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं ना, एक 2-3 मिनी अटैक्स तो मुझे हो ही जाते हैं, बार बार चेक करना, अरे पासपोर्ट है कि नहीं, बोर्डिंग पास है कि नहीं। सो एक बार थोड़ा सा सेफली रख लिया तो थोड़े टाइम तक यू जस्ट डोंट हैव टू रिमूव इट अगेन एंड अगेन, योर वर्क विल बी डन ओनली विथ योर फेस। हाउ कूल इज दैट टेक्नोलॉजी। एंड बस इसी के साथ आफरीन अगले गाने की तरफ बढ़ेगी, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में किंग खान का मैजिक सुबह सुबह ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ, क्या कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. 89.6
10: Tanishq lekar aaye hain Garden of Gems, जहाँ कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।

0: Love.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

देखिए कतर में अगर आप 8-10 साल या उससे भी ज्यादा है तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरीन को आप सुन रहे हो राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कोई भी जगह पर हम कितने भी साल रहते हैं या समथिंग, देन वी ऑलवेज कंपेयर के इन्फ्लेशन कितना हुआ है, प्राइसेस कितनी बड़ी है चीज़ों में। अब हम इसमें ना इन्फ्लेशन में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे जैसे रेंट, स्कूल फीस और बड़े एक्सपेंस, बट वी वांट टॉक अबाउट आर रेगुलर ग्रोसरी, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिक किचन एसेंशियल्स। कभी कभी लगता है कि दुनिया भर में प्राइसेस जितनी रैपिडली चेंज हुई है उस कंपेरिजन में कतर में एवरीडे ग्रोसरी आइटम्स हैव रिमेन रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? वेल, देयर इज एन एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, आई विल टेल यू। अकॉर्डिंगली यहाँ पर न्यूज में वेजिटेबल प्राइसेस एट अल सैलिया सेंट्रल मार्केट आर करंटली रिलेटिवली स्टेबल डिस्पाइट समर हीट है, हायर स्पॉइलेज है एंड इस टाइम लोकली ग्रोन प्रोड्यूस की लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी होती है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हमारे जो ग्रोसरी का मतलब, अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करूं उसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ठीक है। एंड वन मेजर फैक्टर इज कतर्स डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाई। मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो बहुत सारे कंट्रीज से आती है, सो मार्केट किसी एक सोर्स पर ना कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है यहाँ पर। और अगर एक सोर्स से सप्लाई कम भी हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज बिल्कुल नहीं होती है। ऑल्टरनेटिव्स जो रहते हैं दैट हेल्प्स मेंटेन अवेलेबिलिटी एंड कॉम्पिटिशन। एंड अनदर पॉजिटिव बिट यहाँ पर ये भी है कि अगले 4-6 हफ्तों में अब तो लोकली ग्रोन कतर प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है, विच वेंडर्स से कि इस वजह से शायद जो प्राइसेस है और भी कम हो सकते हैं। सो द लॉन्ग टाइम कतर रेसिडेंट्स, आई जनरली वांट टू नो फ्रॉम यू कि 10 साल पहले के कंपैरिजन में आपको अपना एवरीडे ग्रोसरी जो है बिल कितना डिफरेंट लगता है। कि ऐसा सच में है कि पहले प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती थी और या बहुत सस्ती मिलती थी और अब ये महंगी हो गई है? बिकॉज समटाइम्स इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स एक स्टोरी बताते हैं और हमारा सुपरमार्केट ट्रॉली दूसरी स्टोरी बताता है। वी आर द कंज्यूमर्स, हम खुद जब खरीदते हमें पता चलता है। आई वॉन्ट नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: नशे से चढ़ गई।
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn?
2: Yes!
1: To play?
2: Absolutely!
1: To grow?
2: With Maserati!
3: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
2: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
3: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
4: The show was absolutely amazing.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
3: The mentalist Suhani Shah live.

0: व्हाट अ प्यारा सा गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, राइट हियर अभी आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए जरा अब हम प्यारे प्यारे हमारे गेम्स भी खेलने लगे। यस, वक्त हो चला है कि हम यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेले। सीन सुना रही हूँ और आपने गेस करना है बॉस ये सीन है कौन सी मूवी से। प्रॉबेबली अगर ये मूवी आपने नहीं भी देखी होगी ना, तो शायद इनके जो नाम ये ले रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा। हिंट, आई एम ड्रॉपिंग हिंट्स, यू सी। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: लगना, दिल में क्या है? बोल।
3: नहीं वो क्या है कि डॉली इतनी रूपवती है, इसको तुम जानते हैं, तो कभी कभी इस कुत्ते मन में सवाल उठे कि कहीं कॉलेज में उसने डॉली को तुझी नजर से नहीं देखा होगा।
0: ओके, कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर? क्वाइट अ पॉपुलर मूवी, वी ऑल नो अबाउट दिस मूवी। 5000186 इज माई नंबर एंड यहाँ पर मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। सो वेल, आई हैव गॉट उपेंद्र शर्मा का मैसेज ऑलरेडी हियर, खुमैल का मैसेज आ गया है एंड और कौन है यहाँ पर, मोहसिन का मैसेज है, कुंवर का मैसेज है एंड येस अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मैसेजिंग हियर। आई थिंक दिस वॉज क्वाइट ईजी, है ना? चलो ठीक है, मैंने सोचा हफ्ते के बीचों बीच कहाँ आपके दिमाग को ज्यादा दौड़ाए, चले कभी कभी इजी पीजी भी चल जाता है। अरमान मलिक की आवाज में अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, इंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: वेलकम टू आवर गेम, जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। आप भी अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन वॉइस मैसेज ना भेजिए एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैं यहाँ पर सामने आपके मैसेजेस पढ़ सकती हूँ, सुन नहीं सकती हूँ करेंटली। सो यस, आज का सीन क्या है, लेट्स हियर दैट आउट।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: लगना, दिल में क्या है? बोल।
3: नहीं, वो क्या है कि डॉली इतनी रूपवती है, कैसे को तुम जानते हैं, तो कभी कभी इस कुत्ते मन में सवाल उठे कि कहीं कॉलेज में उसने डॉली को दूसरी नजर से नहीं देखा होगा।
0: All right, quite an intense movie this is. कौन सी मूवी है ये मैं थोड़ी ना बताऊंगी, ये आप लोग ही तो बताते हो। So here it goes.
4: Good morning, आपकी।
0: Good morning.
4: कुमार पांडे।
0: ये हाँ जी।
4: नाम है ओमकार सेफलिकान और अजय देवगन। Thank you, it's hot.
0: That is right. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। हुसैन मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद अमर, then I have your उपेंद्र शर्मा, then I also have मोहसिन सुलेमान एंड कुमेल, इनका तो मैसेज आते ही है। अब्दुल रहमान का भी मैसेज आया है, विद दैट चार्ली का भी मैसेज आया है, एंड देन यस अ लॉट ऑफ देम। सो वेल, दिस इज इंडीड द राइट आंसर, ओमकारा। एंड ओमकारा की खूबसूरत बात यह है, विशाल भारद्वाज की मूवी तो है ही, लेकिन विशाल भारद्वाज एज अ डायरेक्टर जब भी कोई मूवी बनाते हैं, वो अपनी वाइफ को हमेशा एक गाना देते ही है, एक नहीं कुड बी मल्टीपल सॉन्ग्स। एंड द रीजन बीइंग, पता है, वो ये इंडस्ट्री में ही इस वजह से आए हैं ताकि उनकी वाइफ को गाने का मौका मिले। लाइक ही इज सो डिवोटेड टू हिज वाइफ के उनका जो गाने का सपना है उसके पीछे विशाल भारद्वाज ने अपनी जिंदगी लगा ली, अपनी उनका सपने को अपना सपना माना। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है रेखा और विशाल भारद्वाज की। किसी दिन मैं आपको फुर्सत में सुनाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो सुनाने वाली हूँ रेखा की आवाज में ये गाना। एंड दिस मूवी हैज अ लॉट ऑफ सॉन्ग, बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल दिस वन बीइंग माय अल्टीमेट फेवरेट। कुछ भी कहो यार, रेखा की आवाज में वो नमक तो जरूर है। Enjoy this track on which it's hot.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ आफरीन का साथ जुड़ गया है आपके साथ ऐनक लगाना सुखबीर सोहम चक्रवर्ती जॉली मुखर्जी की आवाज में धूम से कमिंग अप राइट हियर एंड आई एम श्योर जब ये गाना आप सुनते हो ना लाइक एटलीस्ट जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ मुझे सिर्फ ऋतिक रोशन का डांस ही नजर आता है डज दैट हैपन टू यू ऑल्सो Enjoy this track on Mirchi. It's hot.
3: Time check. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड लेट्स हेड टू आवर गोल्ड अपडेट डायरेक्टली।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल देखिए, आज का गोल्ड अपडेट जो है वो ये कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 579 कतरी रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2711 कतरी रियाल। वेल 10 ग्राम गोल्ड बार की बात करें तो इट इज एज 5352, 1 आउंस इज एट 16543 एंड माई फ्रेंड्स 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61423 कतरी रियाल। ये है आज के गोल्ड रेट, सोना लेना हो या ना लेना हो लेकिन हमेशा नजर रहनी चाहिए। एंड फिलहाल तो देखा जा रहा है ट्रेंड कि सोने का जो भाव है दिन ब दिन गिरते जा रहा है, तो फायदा जरूर उठाइएगा। फिलहाल के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए मैं हूँ माइक से दिल तक आफरीन आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La virpa, la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
1: आप किस से बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो
2: नहीं,
1: बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर
2: नकली तरीके से. क्या
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली वाइफ से बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं, बात नहीं, तमीज सीखिए.
1: नहीं, तमीज
2: नहीं,
1: सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live in

वेल आफ्टर दिस फैंटास्टिक ट्रैक लेट्स हेड टू कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें. देखिए महीने के बीचों बीच हम आ गए हैं एंड नंदलेस हम शुरुआत में हैं या बीच में हैं या आखिर में हैं, हमारी नजर एक्सचेंज रेट पर होनी चाहिए और उसका फायदा फटाफट से उठा लेना चाहिए. वेल अगर आज के एक्सचेंज रेट की बात करें माय फ्रेंड्स, तो आज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 26.23. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.13. अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो बांग्लादेशी टाका इज एट 33.83. एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीस 90.17 एंड एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको नेपाली रुपीज दैट इज 41.83. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां एंड वन एंड ओनली फॉर्मूला ऑफ योर हैप्पीनेस इज 89.6 FM पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ready?
6: Ready!
5: To learn?
6: Yes!
5: To play?
6: Absolutely!
5: To grow?
6: With Maserati!
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly fresh.

नंदनी श्रीकार की आवाज में व्हाट अ क्लासिक सॉन्ग यार फ्रॉम द मूवी रावण, अभी आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड वेल, जहां नंदिनी श्रीकार की आवाज हमने यहां पर सुनी, तो चलिए एक और ऐसी आवाज की तरफ आपको ले चलती हूं। वेल इट्स टाइम दैट वी प्ले मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। दैट्स राइट, और मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में ये अगली एक आवाज ऐसी सुना रही हूं जो हमारे 90s के साथ जुड़ी तो है जरूर, लेकिन अगेन मेरे ख्याल मैं कह सकती हूँ कि हाँ 90s इंडी पॉप का ये एक हिस्सा रही है, और आई डोंट वांट टू से मच अबाउट दिस वॉइस, बट गेस कीजिए ये कौन सी सिंगर की आवाज़ है। सो हियर इट गोज़।

व्हाट अ पावरफुल आवाज, नहीं इतनी जबरदस्त पावर पैक्ड आवाज है ये। 5000196 इज माय नंबर, ठीक है। बताइए यहाँ पर आकर कि ये कौन सी सिंगर की आवाज थी। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये 90s इंडी पॉप गाने बहुत गाती थी, सो यू गॉट टेल मी दैट विच सिंगर इज दिस। 5000196। मीन वाइल मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर, केके की आवाज में ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: The Mentalist Suhani Shah live.

का, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गाने की और उन्होंने कहा कि अरिजीत सिंह का नाम गाना कोई बजाया, एंड इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट यस आउट ऑफ ऑल वन ऑफ दिस ट्रैक जो मैंने बजाया है फुरकान की रिक्वेस्ट पर राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग और यहाँ पर हम खेल रहे थे एग्जैक्टली जहाँ एक आवाज मैंने आपको सुनाई है, आपने गेस करना था कि ये आवाज है किसकी. सो लेट्स हियर इट.

0: What a beautiful power pack song that is, है ना? And ये गाना, ये आवाज किसकी है, ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही लोग बताएंगे.
1: Hi Afreen.
0: Hello.
1: Good morning.
0: हाँ जी, good morning.
1: Princeton here.
0: हाँ, Princeton.
1: The singer's name is Shubha Mudgal.
0: Okay.
1: Thank you and have a lovely day. Bye bye.
0: That is morning, right. Afreen. Good morning.
2: The singer is Shubha Mudgal.
0: Okay, that is absolutely right. And not only this, यहाँ पर और भी लोगों के मैसेजेस आए हैं, जैसे ताहिर का मैसेज आया है, then I have चिराग मैसेजिंग मी, कुंवर पांडे मैसेजिंग मी, आपका मैंने अभी देखा वॉइस मैसेज, सॉरी, मोहम्मद यूसुफ खान है, एंड जहाँ शुभा मुदगिल की बात हुई है, 90s इंडी पॉप की बात हुई है, ऑफकोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि मैं अगला गाना यही बजाने वाली हूँ, एंड आई जस्ट विश कि ये गाना बज जाए और कहीं ना कहीं मौसम हम पर मेहरबान होकर सच में यार बरसा जाए, इतना मजा आ जाएगा ना. आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे गो टू दुहापोट अगर ऐसा हो गया तो, सीरियसली. एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ अंदर शीट्स हॉट.

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirji One. It's hot.
2: Well, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के एग्जैक्टली 9 बजे की तरफ. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और अगला गाना संजू राठौड़ की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

Well, that is Raghav, Tanish Bagchi, Rasees Kaur ki awaaz mein. Teri baaton mein aisa uljha jiya, and that was also apparently the title of this movie. Well, main bilkul bhi baaton mein uljhane ko nahi aayi hu, seedha aapko agle gaane ki taraf le jaane aayi hu. Ajay Atul ki awaaz mein, a jhingaad song yaar. Kaay mhanu aata main marathi, main marathi zone mein chali jati hu when I listen to Sanju and Ajay Atul and all these tracks. So well, coming up next track, jhingaad. It's zingaad not, it's jhingaad bhai. Actually, yes, ये गाने के तुरंत बाद एक झिंगाट आइटम भी लेके आने वाली हूँ. मतलब ऐसे खाने का आइटम. यस, इस गर्मी में आपको ठंडी का एहसास दिलाने वाला एक आइटम कौन सा रहेगा? जस्ट कमिंग आफ्टर दिस ट्रैक. यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी. दैट इज सिंपली आफ्टर इन ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

वेल देखिए कतर में ऐसे मौसम में एक चीज काफी होती है कि जैसे हम बाहर कहीं निकलते हैं ना, विद इन 5 मिनट्स वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एसी। लेकिन सच कहूँ ना, ऐसे मौसम में एसी से भी ज्यादा सैटिस्फाइंग क्या होता है, समथिंग विच इज प्रॉपरली कोल्ड एंड इंडल्जेंट। सो इफ यू आर इन दैट मूड, डेरी क्वींस ब्लिजर्ड ऑफ द मंथ इज स्ट्रॉबेरी बनाना ब्लिजर्ड। यस, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना टुगेदर, चिल्ड, क्रीमी एंड एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट फील्स लाइक अ लिटिल एस्केप फ्रॉम द हीट। एंड आई लाइक दैट इट्स वन ऑफ दोज फ्लेवर्स जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फेमिलियर है, फ्रूटी है, कम्फर्टिंग है एंड जस्ट हैप्पी एज DQ सेज, है ना। सो नेक्स्ट टाइम कतर की हीट थोड़ी ज्यादा पर्सनल हो जाए, देन यू नो वेयर यू हैव टू हेड टुवर्ड्स टू कूल डाउन अ बिट। बीट द हीट विद स्ट्रॉबेरी बनाना ब्लिजर्ड एट डेरी क्वीन, एंड अपेरेंटली डेरी क्वीन इज ऑल्सो द एसोसिएट स्पॉन्सर ऑफ आर सुहानी शाह लाइव इन कतर। वी आर गोना सी यू ऑन 25th सितंबर देयर, ठीक है ना। बैक टू म्यूजिक, प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू राइट हियर, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabara, puskabana, sakabana. Yabala. Murga, murga. La virbala murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: हाँ जी कौन?
1: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे बात करनी है?
1: किससे बात करनी है?
2: भैया किससे बात? अबे
1: किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके
1: मिला। नंबर चेक करके दोबारा मिला?
2: पागल।
1: पता नहीं
2: कौन बोल रहा।
1: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा है इको।
2: हेलो।
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हेलो। जेंट्स आने पर यहाँ को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया नंबर चेक।
1: नंबर चेक के मिला।
2: हेलो।
1: हेलो।
2: भैया क्यों परेशान कर रहा?
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
2: पता नहीं कौन
1: है यहाँ पे फोन करे जा रहा है। फोन करे जा रहा है
2: भैया क्या?
1: अबे पागल हो गया क्या यार?
2: महंगा
1: पड़ जाएगा। नंबर आ गया मेरे पास।
2: पागल
1: कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि है।
3: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ only on मिर्ची।
5: This show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

वेल, आपको नहीं लगता कि आजकल का कॉमेडी कंटेंट जो है वो बहुत फोर्स्ड होता है, कि हमें ऐसा लगता है कभी कभी, अच्छा अभी हमें बताया जा रहा है, ओके हमें अब यहाँ हंसना है। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को, and Afreen is going to talk about something which she has genuinely enjoyed. ऐसा कॉमेडी कंटेंट ऑफ लेट आता नहीं है. ओके, रिमेंबर वो टाइम जब कॉमेडी डिडंट हैव टू ट्राई सो हार्ड. लेट मी टेक यू बैक टू सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी, बा बहू और बेबी. वो कैरेक्टर्स थोड़े अजीब होते थे, सिचुएशंस बिल्कुल ऑर्डिनरी होती थी, कोई मैसिव प्लॉट नहीं था, बट समहाउ यू वुड जस्ट सिट देयर स्माइलिंग. एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स का ये नया शो चुंबक ब्रिंग्स बैक अ लिटिल बिट ऑफ दैट फीलिंग. इट इज बेसिकली फाइव फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन चुंबक कॉलोनी मुंबई में. नेबर्स है, लेकिन वो पुराने वाले नेबर्स जिनके घर जाने के लिए ना अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता है, जिनके आपको ना घर में क्या चल रहा है ना सब कुछ पता होता है, आप पहले ही उनके साथ में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होते हो. एंड वी ऑल विटनेस दिस काइंड ऑफ नेबर्स, है ना, हम एट सडन पॉइंट ऑफ टाइम वी प्लेड सच रोल्स, एंड परहैप्स दैट्स व्हाई द शो फील्स सो वार्म. इट इज इन ट्राइंग टू शॉक यू और कॉन्स्टेंटली गिव यू अ ट्विस्ट. इट फाइंड्स इट्स ह्यूमर इन ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑर्डिनरी relationships. And look at that ensemble, man. Neena Gupta hai, Devin Bhojani, Sumit Raghavan, Sumit Vyas, Manji Parekh, Arjun Vijlani. My God, I just love the star cast yahan par. And it genuinely feels like familiar faces from different corners of Indian television, which have moved into one colony quite literally. And behind this entire series is Atish Kapadia and J.D. Majethia. If you know, these are the names, these are the big names between Sara Bhai versus Sara Bhai aur Khichdi. So well, अगर आप भी उस जनरेशन से हैं जहां कॉमेडी लाउड होने की जरूरत नहीं थी, वेयर कैरेक्टर्स देमसेल्फ वर इनफ टू मेक यू लाफ, देन आई थिंक सो चुंबक विल रियली मेक यू फील गुड अबाउट इट. एंड सच में ऐसे आपको ना आपके नेबर्स याद आएंगे, आपको वो इतनी लाइट हार्टेड कॉमेडी इतनी अच्छी लगेगी, दैट ये आफरीन की गारंटी है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Bank Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Bank Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Well, देखिए, हम सब ऐसे स्टेज पर है ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना जिंदगी में, कुछ कुछ चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं या फिर छूटते जा रही है। होता है ना ऐसा कि कभी कभी किसी के बदल जाने से ज्यादा अजीब ही लगता है कि एक वक्त था कि कोई इंसान आपके जिंदगी में इतना अहम था, आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। एंड देन वक्त बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जज्बात बदल जाते हैं एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। और आज इसी एहसास पर आफरीन की शायरी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, कौन किसको दिल में जगा देता है, कौन किसको दिल में जगा देता है, दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। दरख्त यानी वो पेड़, ठीक है, जिसने कभी उन पत्तों को अपनी शाखाओं पर संभाल कर रखा था, वो पेड़ जो सूखे पत्तों को भी गिरा देता है। कौन किसको दिल में जगा देता है, दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, गालिब जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है। थोड़ी कड़वी है लेकिन शायरी की खूबसूरती भी यही है ना कि कभी कभी दो लाइंस वो कह जाती है जो हम एक पूरे कॉन्वर्सेशन में नहीं कह पाते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची साथ।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The Mentalist Suhani Shah live

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना, वैसे तो ओरिजिनल ये गाना मिस्टर इंडिया का श्रीदेवी पर था, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग यार। श्रीदेवी इतनी प्यारी लगी है और उनके आउटफिट्स कुछ अलग ही गजब के थे। वैसे ये जो नया वर्जन था ना, वो भी मुझे अच्छा लगा, हालांकि मुझे जल्दी पसंद नहीं आता। ऑफकोर्स लगना ही था, विद्या बालन का ये गाना था मूवी का तुम्हारी सुल्लू, माई फेवरेट, अल्टीमेट फेवरेट मूवी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई अपनी, ऐसा होता है ना कि अपनी जिंदगी पर ऐसी कोई मूवी बनी हो या सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगती हो, ऐसे सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। यू फाइंड योर सेल्फ एज अ मेन कैरेक्टर इन सर्टन मूवीज। फॉर मी इट हैज टू बी तुम्हारी सुल्लू। आई फेल्ट दैट इट्स बीन रिटन ऑन माई लाइफ स्टोरी कहीं ना कहीं। सो वेल, ऐसी आपकी भी अगर कोई लाइफ स्टोरी पर मूवी है ना, आई वुड लव टू नो कि आफरीन, यू नो वॉट, दिस मूवी का दिस किरदार, दिस इज वॉट आई रिलेट टू। मैं बहुत, इससे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई अपनी, ऐसा होता है ना कि अपनी जिंदगी पर ऐसी कोई मूवी बनी हो या सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगती हो, ऐसे सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। यू फाइंड योर सेल्फ एज अ मेन कैरेक्टर इन सर्टन मूवीज। फॉर मी इट हैज टू बी तुम्हारी सुल्लू। आई फेल्ट दैट इट्स बीन रिटन ऑन माई लाइफ स्टोरी कहीं ना कहीं। सो वेल, ऐसी आपकी भी अगर कोई लाइफ स्टोरी पर मूवी है ना, आई वुड लव टू नो कि आफरीन, यू नो

ठीक है, मैं यहाँ पर आपके जवाब सुनूंगी मीनवाइल और लेती हूँ अलविदा, बट आई एम हियर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई एम गोइंग टू बी हियर टू लिसन टू ऑल योर आंसर्स. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय सायोनारा एंड बॉस खुश रहो, खलास सबको छोड़ो और बस खुश रहो. दिस इज व्हाट आई वुड लव टू से एवरी टाइम व्हेन आई गो. अगला गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में अ पावर पैक्ड गाना, प्यारी सी आवाज और उससे भी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस थी. एंजॉय दिस माइक से दिल तक आफ्टरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: जब ये गाना आपके लिए मैंने चला रखा था, मैं एक बात सोच रही थी, देखा हजारों दफा, इजंट इट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फॉलिंग इन लव एट द फर्स्ट साइट। कभी कभी होता है ना लाइफ में कि बहुत बार हम उस शख्स से मिले लेकिन कभी भी वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आई, बट वन डे
1: मिर्ची कैफे।
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है मेरे एक चाचू हैं, ही इज अप्रोक्स 55 इयर्स ओल्ड। उन्होंने अभी रिसेंटली गिटार सीखना शुरू किया, सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी अराउंड हिम क्यूरियस एंड प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को थी कि भाई तुम अब क्या ही करोगे गिटार सीख के, क्या ही फायदा। ही जस्ट सेड अ सिंपल थिंग कि यार 20 साल की उम्र से मुझे गिटार सीखने का शौक था फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग अटेंशन, लेकिन यू नो जिम्मेदारियां, वक्त नहीं मिला। पर अब मेरे पास वक्त है और क्यों नहीं सीखूं मैं। एंड ही इज सो हैप्पी जब वो ऐसे कोशिश करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। और चाचू की तरह जितने भी लोग हैं जो यू नो कभी भी कुछ भी लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं, उनको मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, दिलदार तो दूसरों के लिए बहुत बन लिए ना, अब खुद के लिए थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, इट्स हॉट।
2: साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La jefa, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: पागल
3: सर, सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live

0: एब्सोल्यूट फुल मार्क्स. एक्चुअली जिंदगानी पहेली ही तो है. सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना ये अमेजिंग गाना
1: मिर्ची कैफे.
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. कोई एक इंसान ऐसा सबकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जिसमें आपको दिखावे बनावट की जरूरत ना पड़े यार, बिकॉज वही फिर पहेली बन जाता है क्योंकि हम कुछ और बन रहे हैं जो हम हैं नहीं. करते हो ना आप भी ऐसा? अपनी स्किन हटा के देखो, मतलब बिग बॉस में नहीं जी रहे हो यार तुम असली जिंदगी में जी रहे हो. जस्ट बी योरसेल्फ. और जब वो इंसान मिल जाता है जिसके साथ सारी टेढ़ी मेढ़ी उलझी बातें बकवास कर सकते हैं हम, तो फिर उतनी पहेली नहीं रहती जिंदगी और फिर लगता है कि सब कुछ ब्यूटीफुल है. अच्छा एक सीक्रेट बताओ, क्या आपने भी ये नोटिस किया है कि अगर आप किसी से बहुत बातें करते हो तो आपको उसी इंसान से और ज्यादा बातें करने का मन होता है, क्योंकि फिर वो कॉन्टेक्स्ट कौन दे यार कि मैंने उसको कल जो बताया था अब फिर नए सिरे से किसी और को कैसे बताऊं कि क्या कहानी चल रही है जिंदगी में. अगर ऐसा है तो आप भी मेरे जैसे हैं. चलो कनेक्ट करते हैं. इंस्टाग्राम पे आपको मैं मिलूंगी paruls.world के नाम से और नंबर है मेरा 7045983983. जहां भी आप कनेक्ट करना चाहो लेट्स कनेक्ट. ऑल्सो यू हैव टू टेल मी कि आपको कौन सा गाना सुनना है इस शो पे. ओके फिलहाल अगला आपके लिए आ रहा है अरिजीत सिंह और प्रिया श्रेया की आवाज में. वही जो हम बात कर रहे थे ना, जब कोई मिल जाता है ना वैसा वाला जिससे खूब पटर पटर कर सकते हैं तो अच्छा लगता है. लिसन टू दिस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: ये जो इश्क दे फनियर है ना, ये बहुत ही फनी फनी जगह पर लग जाते हैं कुछ लोगों को, मैं बता रही हूँ आपको।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आपको पता है सुबह सुबह जिम जाओ, ठीक है, वहां भी कुछ इश्क दे फनियर चल रहे होते हैं। अगर आप ऑफिस जाओ वहां भी चल रहे होते हैं। अगर आप यू नो सोसाइटी में नीचे घूमने निकल जाओ अपने घर के नीचे, तो वहां भी कुछ चल रहे होते हैं। स्कूल कॉलेज एवरीवेयर आई टेल यू। तो इन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी, जिनको जहां देखो वहां इश्क मिल जा रहा है, कि भाई गूगल मैप्स भी अभी ये बताने में तुम्हें असमर्थ है कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। अपना नहीं है मेरा, कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा तो सोचा आपको भी बताऊं। वेल, ये ना जेनरेशंस वाइज प्यार और इश्क डिफर कर रहा है अभी। तो अब यार हम जो मिलेनियल्स है ना, हमें ये ब्रेड क्रमिंग और ये सब समझ में नहीं आ रही है। हम इस वाली जेनरेशन के हैं। जो अगला गाना आ रहा है सोनू निगम और अलका याग्निक की प्यारी आवाजों में, सुनो इस गाने को। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: ऐसे ही मैं भी ले आती हूँ आपके लिए ऐसे ऐसे गाने जो शायद आपने नहीं सुने हो या फिर आप भूल चुके हो।
1: मिर्ची कैफे,
0: मिर्ची कैफे इज द शो। मेरा नाम है पारुल। आपको पता है ये फिल्म सत्य प्रेम की कथा से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में एंड कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन। आपने वो फिल्म पक्का देखी होगी, बट आपको ये गाना याद था नहीं होगा। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक ना। ऐसे बहुत सारे गाने हम भूल जाते हैं, ऐसे भूले बिसर जाते हैं हमारे लिए। वेल, आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल रिसर्च में ये पता चला है कि आफ्टर 33 ईयर्स, मतलब जब आप 33 साल के हो जाते हो 33 ईयर्स के, उसके बाद आप नया गाना उस तरीके से कंज्यूम करना बंद कर देते हो। देन यू ओनली लिसन टू द सॉन्ग्स विच यू रियली लाइक ऑलरेडी लाइक। नए गानों में उतनी शिद्दत नहीं लगाते आप। सीरियसली, क्या आप भी ऐसा करते हो? ये ग्लोबल रिसर्च है। आई वांट टू नो अबाउट यू। क्या आपको नए गाने सुनना पसंद है? ऑफ कोर्स, तभी आप मेरा शो सुनते हो। नहीं, मिर्ची कैफे इज द शो। paruls.world के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। प्लीज मुझे बताओ कि कैसे गाने आपको सुनना पसंद है और आप कैसे गाने मेरे शो पे सुनना चाहते हो। ऑल्सो आप ये बताओ कि कौन सा गाना आज के पूरे 2 घंटे के इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा लगा। ओके, प्लीज डू राइट टू मी। नंबर भी है मेरा एक व्हाट्सएप का, 7045983983। यू कैन से हाई पारुल, मिर्ची कैफे, जो भी लिखकर आप उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, बट प्लीज ये याद रखो हमेशा कि गाने ही एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं कौन सी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमें भी नहीं पता कि कौन सा गाना सुन के कौन सा इमोशन स्ट्राइक होगा हमारे अंदर से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ट्रस्ट मी। तो गाने सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई सी भी एज हो जाए आपकी। तो वेल, अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से हो चुका है। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे आप मुलाकात कर सकते हैं, एंड अभी के लिए बाय टाटा। अपना ख्याल रखो और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, क्योंकि जिंदगी कितने पल की है सुनो केके की आवाज में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अपनी टाइम मशीन से 2004 से आपके लिए गाना लेकर आई मैं. एंड यू नो वीर ज़ारा का जो पूरा एल्बम है, इट्स अ होलसम एल्बम. नहीं
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. ये देखो जी, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मैंने आपको ये सुनाया. अच्छा बाय द वे, आपको पता है वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी का जो किरदार है वो एक्चुअली ऐश्वर्या राय के लिए लिखा गया था, बट देन फॉर सम रीजंस वो नहीं प्ले कर पाई ये पार्ट और ये रानी मुखर्जी ने प्ले किया एंड इट बिकेम अ क्लासिक. ऐसे ही ना जिंदगी में बहुत सारे आपने देखी होंगी चीजें जो आपके लिए नहीं होती, आप चाहते हो बहुत सारा, बट कहते ना कि गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर प्लान्स. तो ये शब्द जो हैं तेरे लिए, ये नोट करके रख लो, क्योंकि जो तेरे लिए है ना दोस्त वो तुझे मिल जाएगा. हो सकता है थोड़ी देर लगे, तुझे समझ ना आए, पर जो तेरे लिए है वो तेरे लिए है. अगला गाना फिर से तेरे लिए फ्रॉम द फिल्म फितूर. ये आप सुनोगे सुनिधि चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज में. आई थिंक ये गाना आपने नहीं सुना होगा, बट जस्ट गिव इट अ हियर. यू नो कुछ गाने होते हैं ना जो फिल्म में ऐसे दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले गाने होते हैं जिनको हम शायद सुनते हैं और भूल जाते हैं. दिस इज वन ऑफ देम, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सुनो इसको, मिलते हुए छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूं आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.
2: मैंने

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: के नशाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: कुछ लोग जब लिखते हैं ना तो उनकी कलम से इमोशंस की बारिश हो रही होती है।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये गाना जिए क्यों, इट टचेस अ लॉट ऑफ इमोशंस इन लॉट ऑफ पीपल। लिखा है जयदीप सानी साहब ने। हु कैन थिंक ऑफ अ लाइन लाइक करारी चाय, यू नो, रात लाजमी जालिमी रात। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो दिन तो कट जाता है पर रात नहीं कटती। आपको पता है जयदीप सानी साहब ने और कौन कौन से लिरिक्स लिखे हैं, जस्ट लिसन टू दिस, ठीक है। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, नस नस मेरी खोले, चक दे इंडिया। मतलब यार, हैट्स ऑफ टू द लिरिसिस्ट। ये गाना पापोन की आवाज में आपने सुना, जिए क्यों फ्रॉम द मूवी दम मारो दम। और अच्छे लिरिक्स और अच्छे गानों की बात हो ही रही है, अगले गाने की तरफ आपको लेके चलती हूँ। अमिताभ भट्टाचार्य, अमेजिंग राइटर अगेन, पापोन की आवाज अगेन। दिस इज फ्रॉम द फिल्म मेट्रो। इन दिनों यार मोस्टली मैं चाहती हूँ आपके लिए ऐसे गाने लेकर आऊं जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े, गाने सीधा आपके दिल में उतरते रहे। हियर इट इज अगेन, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कायदे से। सुनो इसको, सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कितनी सारी ऐसी दास्तानें होती हैं ना जो हमारे अंदर ठहरी हुई होती हैं ऑफ आर ओल्ड मेमोरीज।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आई रिमेम्बर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। स्कूल के बाद सब अपने अपने कॉलेज में लग गए, बायो वाली फ्रेंड्स सब डॉक्टरी की पढ़ाई में जिंदगी बिताने लगी, किसी की शादी हो गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई पढ़ने के लिए या यू नो जॉब्स के लिए दूसरे शहर में चला गया, और फिर नए दोस्त बनते चले गए। नहीं, पर एक वो होता है ना कि जो पहले वाले दोस्त आपको जानते हैं जिस तरीके से, वो नए दोस्त नहीं जान पाते हैं। एंड यू इवेंचुअली आप ग्रो करते हो मैच्योरिटी में और अलग अलग लेवल्स में। सो हुआ क्या कि मेरा बर्थडे आया, जो मेरे उस वक्त के खास दोस्त थे आसपास के, उन्होंने काफी अच्छा सा पार्टी अरेंज किया, मस्ती किया एंड ऑल दैट। मेरी ना एक पुरानी दोस्त है, उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि हे क्या कर रही है, आई एम श्योर तेरे लिए कोई ना कोई चॉकलेट केक लेकर आया होगा और तुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद ना। एंड मैंने बस ये फोन कॉल सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जस्ट दैट कि आप जितने रॉ स्कूल कॉलेज में होते हो ना दोस्तों के साथ, जिस तरीके से वो आपको जानते हैं, बाद वालों को शायद आप बताना भी नहीं चाहते, और वो बॉन्ड बन पाता है या नहीं, इट डिपेंड्स यू नो टोटली। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे याद आई तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारी भीड़ के बावजूद भी फील होता है अकेला, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास आपके दोस्त हैं पुराने वाले, प्लीज उनसे चिपक के रहो, चाहे वो इरिटेट हो जाएं आपसे, बट कल्ले रहने से तो अच्छा है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मैं हूं आपके साथ पारुल, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा फ्लैगशिप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: किसी की याद ना ऐसे अचानक से नहीं आती। एक कोई गाना बजता है, किसी परफ्यूम की स्मेल आती है, किसी पुरानी गली से गुजर रहे होते हो, या फिर किसी एक रेस्टोरेंट में एक मेन्यू में एक डिश नजर आ जाती है। सामने नहीं होता वो इंसान, लेकिन पूरा का पूरा इंसान और वो वक्त जो उसके साथ बिताया था सामने आ जाता है, राइट?
1: मिर्ची कैफे
0: शुरू हो गया है। शो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। अभी अभी आपने सुना यारियां फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल। यार ये जो मूवीज में रिप्राइज वर्जन होते हैं ना गानों के, उनकी एक अलग लीग होनी चाहिए। नहीं, दे जस्ट टच यू एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस और मेमोरीज रिवाइव हो जाती है। नहीं, वेल अगला गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक ऐसा ही मेमोरेबल के की आवाज में। द सॉन्ग इज कॉल्ड अभी अभी, और आपको पता है ये आर्को प्रावो मुखर्जी ने गाया भी है और लिखा भी है। आप ना एक लाइन सुनना बस इस गाने की। द लाइन सेज, अभी अभी दिल की सुनी है, अभी ना करो जमाने की बात। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस सॉन्ग। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। सुनते रहिए, इट्स हॉट।
2: अभी

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

89.6 Mirchi 1. It's hot.

वेल आफ्टर दिस फैंटास्टिक ट्रैक लेट्स हेड टू कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें. देखिए महीने के बीचों बीच हम आ गए हैं एंड नंदलेस हम शुरुआत में हैं या बीच में हैं या आखिर में हैं, हमारी नजर एक्सचेंज रेट पर होनी चाहिए और उसका फायदा फटाफट से उठा लेना चाहिए. वेल, अगर आज के एक्सचेंज रेट की बात करें माय फ्रेंड्स, तो आज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 26.23. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.13. अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो बांग्लादेशी टाका इज एट 33.83. एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज 90.17 एंड एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको नेपाली रुपीज दैट इज 41.83. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड वन एंड ओनली फॉर्मूला ऑफ योर हैप्पीनेस इज 89.6 FM पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी ये गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।

0: कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी की भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana saka bana
3: Ya bana
2: Murga murga Naveed wala murga Mirchi murga
4: हेलो,
5: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
4: स्पीकिंग।
5: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
4: हाँ, sure.
5: अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
4: जी।
5: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
4: बोल कौन रहे हैं?
5: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
4: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
5: बिल्कुल
4: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
5: सही बात है,
4: गर्ल्स को नहीं देंगे।
5: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
4: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
5: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ
4: किससे बात कर रहे हैं?
5: मैं, वो मेरी वाइफ है यही। हाँ बोलिए।
4: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
5: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
4: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
5: हाँ?
4: नकली तरह से आप मेरे से
5: नहीं,
4: बातें कर
5: नहीं
4: रहे हैं।
5: नकली तरीके से क्या?
4: नहीं असली मुझे दिख रही है।
5: असली
4: औकात
5: नहीं
4: कर रहे हैं।
5: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
4: वो तो कोई बपौती है क्या?
5: नहीं नहीं, बात नहीं
4: तो
5: तमीज सीख ले। नहीं
4: तमीज
5: नहीं,
4: सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
5: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
4: Oh my.
5: Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगली वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज. साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से. आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी. आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था. एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर. एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा. एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था. ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था. कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था. ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है. बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था. एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया. दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील. एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन. वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना. दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना एडिट अपडेट. बनी गाना में कनेका, एंजॉय.

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gana Gana Mein Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग, राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे, गाने का नाम है दरमियां. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमियान दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Afurin, afurin, simply afurin. Afurin, afurin, simply afurin.
2: Welcome back. Aap sun rahe ho Simply Afreen ko, and let's head to our gold update directly.
0: Gold update.
2: Well, देखिए आज का गोल्ड अपडेट जो है वो ये कहता है that PAMP 1 gram gold lady fortuna bar is for 579 Khatri riyal, whereas 5 gram gold bar is for 2711 Khatri riyal. Well, 10 gram gold bar की बात करें तो it is as 5352, 1 ounce is at 16543, and my friends 10 tola gold bar is for 61423 Khatri riyal. ये है आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन हमेशा नजर रहनी चाहिए. एंड फिलहाल तो देखा जा रहा है ट्रेंड कि सोने का जो भाव है दिन बे दिन गिरते जा रहा है, तो फायदा जरूर उठाइएगा. फिलहाल के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए मैं हूँ माइक सिद्दल तक आफरीन आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: Stay ahead of today's gold rates with Alpardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
4: and earn Qatar Airways Avios today.
3: Visit our branches or download the app now.
0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
5: Number 4.
6: Hao chup kar lang jave kol di tu sang jave ko takkani ch tere rang vich rang jave.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी के कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स जीतकर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10
5: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
6: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो विच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट। ऐसे ही गाने के बारे में बात करने वाली हूँ। इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका। एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है। गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है। वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना, हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट्स। कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट, बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला। उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया। उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन। हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे। पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकलाका, इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस। ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकलाका। अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

This song is a perfect concoction of Krishna, Danda Neoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: यू नो कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग किसी फैंसी इंस्टीट्यूट, एक्सपेंसिव वर्कशॉप या बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बल्कि वो एक्सपीरियंस हमें उन छोटी जगहों से मिल जाती है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बाबू मोशाय, मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। और रिसेंटली एक्ट्रेस मोना सिंह ने भी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए यही कहा कि किस तरीके से टेलीविजन इज द काइंड ऑफ ग्राउंड जिसने उनको सब कुछ सिखाया है। एंड वी वेरी वेल नो कि उन्होंने बी टाउन में आने से पहले टीवी से सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और अपने क्राफ्ट को समझा था। और शायद हम सब की जर्नी भी ऐसी ही होती है। पहला जॉब छोटा हो सकता है, पहला प्लेटफॉर्म ऑर्डिनरी लग सकता है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन वही जगह हमें वो लेसन्स दे जाती हैं जो बाद में बड़े स्टेजेस पर काम आती हैं। और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज इसलिए बोल सकती हूँ यार, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ प्लेस लाइक पटना। बिहार का कैपिटल है बट इट इज अ बी टाउन मार्केट। वहां से मैंने साल 2015 में रेडियो मिर्ची के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। और भाई, अपनी इस जर्नी में मैं मेजर क्रेडिट अपने शहर को देती हूँ, क्योंकि उस छोटी जगह पे ही मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो काम किया, दैट हैज गिवन मी द स्टांस टू बी व्हाट आई एम टुडे। सो इन शॉर्ट, अगर जिंदगी में छोटी शुरुआत भी की है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, बिकॉज दैट्स द बेस दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskaba na puskaba na sakaba na. Jambala. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: हाँ जी कौन?
1: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे बात करनी है?
1: किससे बात करनी है?
2: भैया किससे बात?
1: अबे किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके
1: मिला। नंबर चेक करके दोबारा मिला?
2: पागल
1: पागल।
2: पता नहीं कौन बोल रहा।
1: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा है इको।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो। जेंट्स आने भैया आपको मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया नंबर चेक,
1: नंबर चेक के मिला।
2: हेलो
1: हेलो।
2: भैया क्यों परेशान कर रहा,
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि है।
3: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
2: कुकड़ू
3: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: This show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues.
1: Refreshment partner Baladna. School's back. Time to power up.
2: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
3: Baladna.
2: Taste that Qatar loves.
4: Authentic fashion partner Ivy. Shop 200,000 plus styles from the world's most loved brands on Ivy. With virtual try-on, AI shopping assistant and 90-minute delivery.
0: Partnered by Homes R Us. Super sale. 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan. Your one-stop back-to-school shop.
4: Transportation partner Al Mufta. Rent a car.
0: Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events. Your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
5: Visual media partner Rehab Media.
0: Production partner Symphony.
6: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
7: मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग।
6: अच्छा, इमेजिन करो, तलत अजीज एक्स अनूप जलोटा एक्स शान, हां जी, ये तीन लेजेंडरी वॉइसेस साथ आई हैं फॉर अ 9-track गजल एल्बम और इसका नाम है लव स्ट्रक। द एल्बम इज ऑलरेडी आउट, सो यू कैन गो चेक इट आउट। 18 सितंबर को एक ही घर से दो लोगों की दो अलग अलग फिल्में आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ करीना कपूर की दायरा और उनके नंदोई बोले तो कुणाल खेमू के वाइब के बारे में। एंड माइंड यू, दोनों ही फिल्मों का वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे लेट मी टेल यू, CBFC ने इन दोनों ही फिल्मों को ए रेटिंग के साथ पास किया है, यानी कि इसको मिला है अडल्ट सर्टिफिकेट। आमिर खान एक्स साजिद नाडियाडवाला एक्स आर बालकी, हां जी, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें नजर आ जाए। ये तिगड़ी एक अम्बिशियस सुपर हीरो फिल्म डिस्कस कर रही है। एंड इनफैक्ट आमिर खान तो पिछले साल से ही तमिल डायरेक्टर लोकेश कनराज के साथ ऐसा कुछ बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट क्योंकि स्क्रिप्ट ढंग की नहीं निकल पाई इसलिए वो चीज रह गई। बट एक बार फिर से ये डिस्कशन वापस आई है विद न्यू पीपल अराउंड। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम खेलने की बात कर रही थी बाबू मोशाय। हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज की आपको इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड वी स्टार्ट विद द गेम। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं संदीप शुक्ला जी, हु इज कनेक्टेड विद मी फ्रॉम हैदराबाद। हेलो सर, कैसे हैं आप? तैयार हैं आज का गेम खेलने के लिए?
3: बिल्कुल श्योर।
0: ओके, गोविंदा की फिल्म जिसमें नंदू सबका बंदू होता है।
3: राजा बाबू।
0: क्या बात है, राजा बाबू में गोविंदा को किससे प्यार होता है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है।
3: अच्छा, बीवी नंबर वन।
0: यस जी, बीवी नंबर वन में उनके हस्बैंड कौन है?
3: सलमान खान। सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है।
3: और करण अर्जुन। कितना आसान था।
0: करण अर्जुन में उनके भाई कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान एक डांस ग्रुप के डायरेक्टर किस फिल्म में बने हैं?
3: दिल तो पागल है।
0: क्या बात है, दिल तो पागल है मैं चाक धूम धूम कौन करता है?
3: उनके साथ माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित की फिल्म जिसमें वो चंद्रमुखी बनी है।
3: देवदास।
0: देवदास में देव के बचपन का प्यार कौन है?
3: पारो। ऐश्वर्या।
0: यस, ऐश्वर्या राय एक अट्रैक्टिव चोर किस फिल्म में बनी है?
3: धूम टू।
0: यस, धूम टू में एसीपी कौन है?
3: अपना अपना ये अभिषेक।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसका नाम एक भगवान की आरती के नाम पे है।
3: जगदीश।
0: ओहो, क्या बात है, मुझे लगा था यहाँ तो अटकेंगे आप, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश में सबसे बड़े भाई ओम कौन है?
3: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जो कम्प्लीटली क्रूज पे शूट की गई है।
3: अरे दिल धड़कने दो।
0: दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के भाई कौन है?
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह लियारी के बादशाह किस फिल्म में बनते हैं?
3: धुरंधर।
0: धुरंधर में एसपी चौधरी कौन है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में अपने पापा को दिखाने के लिए फेक डॉक्टर बनते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: यस, मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं? चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को इस लेवल तक जो पहुंचाया आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है सर।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, संदीप जी जिस लेवल पे अटके अगर उसके आगे का गेम खेलना है देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के डीएम पे अपना नंबर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अपने अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने के लिए मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, आज इस गेम की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है और संदीप जी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड थे, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं शिवांगी जी, हु इज कनेक्टेड फ्रॉम लखनऊ विद अस। सो शैल वी कंटिन्यू द गेम विद यू?
3: लवली, आई वुड लव टू।
0: ऑल राइट, अर्शद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: यस इट इज। काबुल एक्सप्रेस में उनके को वर्कर कौन है?
3: जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम फोटोग्राफर किस फिल्म में बनते हैं?
3: गरम मसाला।
0: गरम मसाला में मैम्बो कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल स्टार गराज के मालिक किस फिल्म में है?
3: हेरा फेरी।
0: यस इट इज। हेरा फेरी में लड़की का चक्कर किसका होता है?
3: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी किस फिल्म में अंजलि को भूलने नहीं वाले और ना उसको भूलने धड़कन में अंजलि की शादी किससे होती है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में अमरीश पुरी का पपी खो देते हैं?
3: वो तो बहुत अच्छी बहुत फेमस मूवी है, मुझसे शादी करोगी।
0: ओके जी, तो इतना अच्छा जो परफॉर्म किया है आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है शिवांगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मची भी जाग रहा है तो उसको सोने मत दीजिएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से इस गेम की शुरुआत जरूर होगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: वन की फिर वो झड़ी है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
1: आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कुछ नहीं आया, तो इंग्लिश में आप ये ना कहिए थैंक गॉड इट्स नॉर्मल, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए यार पैसे बर्बाद हो गए।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: She is not your regular heroine.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस देखने को मिले हैं ऑफ एक्ट्रेसेस, राइट. लेकिन आज मैं उन हीरोइंस की बात करने वाली हूँ जिनके हाथ में फूल नहीं FIR होते हैं. सो बॉलीवुड में पुलिस यूनिफॉर्म ट्रेडिशनली हीरोज की टेरिटरी रही है, राइट. वो सिंघम हो, दबंग हो, सिम्बा हो, द लिस्ट इज रियली लॉन्ग. लेकिन जब हमारी फीमेल एक्टर्स ने खाकी पहनी तो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अपने साथ एक अलग काइंड ऑफ अथॉरिटी, अग्रेशन और वल्नरेबिलिटी भी लेकर आई. तो आज मेरे पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मिली हमें कुछ अल्टीमेट लेवल वुमेन कॉप्स. लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी का किरदार फ्रॉम द मूवी मर्दानी. नंबर दो पे बात करेंगे DCP वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह इन दिल्ली क्राइम. नंबर तीन पे IG मीरा देशमुख, प्लेड बाय तबू इन दृश्यम. नंबर चार पे SP आभा माथुर, प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन जय गंगाजल. और नंबर पांच पे कस्तूरी डोगरा, प्लेड बाय रवीना टंडन इन अरण्यक. तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं उस कॉप की जिसके नाम में ही एटीट्यूड है, शिवानी शिवाजी रॉय. रानी मुखर्जी आज शिवानी क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं जो मर्दानी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के खिलाफ खड़ी होती हैं. हमारी इस हीरोइन को किसी हीरो के बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है, खुद क्रिमिनल्स को चेज करती है और जरूरत पड़े तो खुद एक्शन भी लेती है. इन शॉर्ट, शिवानी शिवाजी रॉय स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ करेज, जस्टिस एंड अ वुमन्स रिफ्यूजल टू बैक डाउन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में अपनी इस लिस्ट को वापस लेकर आऊंगी. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La
1: virva la burga. Mirci, burga. Hello.
2: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं आपको?
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
3: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snulu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: हाँ अभी भी बहुत कमी है, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस इस वाले काम की स्पीड ना थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। आप देखो, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े कि भाई ये लड़की क्या ही बोल रही है, बेसिकली आज ना मैं अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट फीमेल कॉप्स की डिस्कशन कर रही हूँ। और जब ये लिस्ट तैयार कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ दैट वी जस्ट हैव अ हैंडफुल ऑफ सच कैरेक्टर्स यार। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिवानी शिवाजी रॉय, प्लेड बाय रानी मुखर्जी इन मर्दानी सीरीज। अब नंबर दो पे बात करते हैं डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह इन द सीरीज दिल्ली क्राइम। तो अगर शिवानी शिवाजी रॉय खाकी की फायर है ना, तो वर्तिका चतुर्वेदी खाकी का कंपोजर है। दिल्ली क्राइम का बैकड्रॉप एक हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड इन्वेस्टिगेशन है और शेफाली शाह की डीसीपी वर्तिका उस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में खड़ी है। वो हर वक्त गुस्से में चिल्लाने वाली बीटाउन कॉप नहीं है, वो सुनती है, ऑब्जर्व करती है, कैलकुलेट करती है और फिर डिसीजन लेती है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लेयर इज यूनिफॉर्म के पीछे का इंसान। केस का प्रेशर है, विक्टिम्स का ट्रॉमा है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर घर लौटकर एक नॉर्मल वाइफ और माँ होने की कोशिश भी। इन शॉर्ट, शेफाली शाह ने वर्तिका को सुपर हीरो बनाने के बजाय ह्यूमन रखा। नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट आईजी मीरा देशमुख, प्लेड बाय तबू इन दृश्यम। सो ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके सामने एक ऑर्डिनरी फैमिली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग कर डाली। दृश्यम में अजय देवगन एज विजय सलगांवकर अपने फैमिली को बचाने के लिए एक इलैबोरेट स्टोरी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी उस स्टोरी के सामने खड़ी है हमारी आईजी मीरा देशमुख, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिसके लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनका पर्सनल क्वेस्ट बन जाता है। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही फीमेल कॉप्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: इन्होंने खाकी को सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, एक पर्सनालिटी बना दी।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं बात कर रही हूँ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट लेवल फीमेल कॉप्स की, जो कभी सिस्टम से लड़ती दिखी, कभी क्रिमिनल से, कभी एक इम्पॉसिबल केस से और कभी कभी खुद के इमोशन से। तो लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की शिवानी शिवाजी रॉय प्लेड बाय रानी मुखर्जी के बारे में। नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी प्लेड बाय शेफाली शाह। नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट आईजी मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट एसपी आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन द मूवी जय गंगा जल, जहां कहानी एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से ज्यादा पूरे सिस्टम के खिलाफ है। प्रकाश झा की जय गंगा जल एक ऐसे पुलिस सिस्टम को एक्सप्लोर करती है जहां पावर, पॉलिटिक्स, करप्शन और क्राइम एक दूसरे से जुड़े हैं। और उसी बीच आभा माथुर एक ऐसी ऑफिसर हैं जो एक करप्ट सेटअप में एंटर करती है और डिसाइड करती है कि सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं, चैलेंज करना है। मूविंग ऑन नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन द क्राइम थ्रिलर अरण्यक। सो ये फिल्म एक एटमोस्फेरिक क्राइम थ्रिलर है जहां एक हिल टाउन में एक मिस्टीरियस डिसअपियरेंस और एक सपोजिटली मिथिकल क्रीचर की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में ले जाती है। फिल्म में कस्तूरी का किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट कॉप नहीं है। शी इज मेसी, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेफिनेटली ह्यूमन। एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ फैमिली और पर्सनल लाइफ। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपने ही इमोशनल बैगेज का वेट। और शायद इसी वजह से कस्तूरी बाकी फीमेल कॉप से अलग लगती है। वेल, मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई ऐसी ही फीमेल कॉप का नाम ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। बट ये बात तो सच है यार दैट इट्स हाई टाइम कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे मीटी फीमेल कॉप्स वाले रोल्स हमें और देखने को मिले। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अच्छा, इमेजिन करो, तलत अजीज एक्स अनूप जलोटा एक्स शान, हां जी, ये तीन लेजेंडरी वॉइसेस साथ आई हैं फॉर अ 9-track गजल एल्बम और इसका नाम है लव स्ट्रक। द एल्बम इज ऑलरेडी आउट, सो यू कैन गो चेक इट आउट। 18 सितंबर को एक ही घर से दो लोगों की दो अलग अलग फिल्में आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ करीना कपूर की दायरा और उनके नंदोई, बोले तो कुणाल खेमू के वाइब के बारे में। एंड माइंड यू, दोनों ही फिल्मों का वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे लेट मी टेल यू, CBFC ने इन दोनों ही फिल्मों को ए रेटिंग के साथ पास किया है, यानी कि इसको मिला है एडल्ट सर्टिफिकेट। आमिर खान एक्स साजिद नाडियाडवाला एक्स आर बाल्की, हां जी, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें नजर आ जाए। ये तिगड़ी एक अम्बिशियस सुपर हीरो फिल्म डिस्कस कर रही है। एंड इनफैक्ट आमिर खान तो पिछले साल से ही तमिल डायरेक्टर लोकेश कनराज के साथ ऐसा कुछ बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट क्योंकि स्क्रिप्ट ढंग की नहीं निकल पाई इसलिए वो चीज रह गई। बट एक बार फिर से ये डिस्कशन वापस आई है विद न्यू पीपल अराउंड। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: 89.6, 89.6.
7: It's hot.

0: हीरो से 3 इंच लंबे होने के कारण हीरोइन को फिल्म से निकाल दिया गया।
1: बॉलीपीडिया
0: मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। यस यू गेस इट राइट, बात हो रही है अबाउट दिस फिल्म मन, जो 1999 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। और इस मूवी में आमिर खान, मनीषा कोयराला, अनिल कपूर, शर्मिला टैगोर लीड रोल्स में और रानी मुखर्जी का स्पेशल अपीयरेंस था। बाकी आपको पता है इस फिल्म के लिए पहले तबू और नंदिता दास को ऑलमोस्ट साइन कर लिया गया था, बट क्योंकि तबू 3 इंच लंबी थी आमिर खान से, शी वॉज रिजेक्टेड। एंड नंदिता दास कंफर्टेबल नहीं थी एक कमर्शियल फिल्म का लीड रोल निभाने में। इनफैक्ट इस फिल्म के सारे गाने जो है ना वो मेजर हिट्स थे, बट ऑडियंस को सरप्राइज होगा ये जान के कि इस मूवी का एक भी गाना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं था। अब देखो, तिनक तिंताना ये वाला जो गाना है, इट वॉज कॉपीड फ्रॉम मलेशियन सॉन्ग सिडांग सिडांग साजा, एंड नशा ये प्यार का नशा है, ये गाना जो है वो सैंपल हुआ था सॉन्ग ला इटालियानो से, विच वॉज बाय टोटो कुटोग्नो। अब पता नहीं मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया या नहीं, बट यस, दिस वॉज द रियलिटी ऑफ द एल्बम ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी। बाकी ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको कोई ट्रिविया जाननी हो तो उसका नाम मुझे बताओ, आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। कनेक्ट करने के लिए MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे मिलो। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yeah,
4: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: हैंड।
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
3: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग,
4: ओके? मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर, सर आपको सी डाल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCTSNONO। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: ये दूसरी कैटेगरी वालों से ना जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लीजिए।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिस्कस कर रही हूँ इमोशनली अवेलेबल लोगों के हिसाब से दो कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो एक्चुअल में इमोशनली अवेलेबल होते हैं आपके आसपास, ये आपकी सिचुएशन भी समझते हैं, और फॉर दैट मैटर अगर इनको अपनी कोई बात समझानी हो तो वो उसमें भी पूरा टाइम देते हैं। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, बड़ी वियर्ड सी है यार। मतलब कहने को इस इंसान को आपसे प्यार है, लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी में ओ हो माइनस। फॉर एग्जांपल, आपके एक्स ने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से आज आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो आप इसके सामने वेंट कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये अपने हाथ खड़े कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, एंड दिल भी लाएगी प्लीज यार डोंट डिस्कस योर एक्स इन फ्रंट ऑफ मी यार, मुझे नहीं पसंद है यार, मुझे उसका नाम ही नहीं सुना। अरे भाई, यहाँ पे एक्स की कोई तारीफ नहीं हो रही जो आप इतना परेशान हो रहे हो, आपका पार्टनर बस वेंट करना चाह रहा है, थोड़ा सा स्पेस दे दो यार। तभी मैंने कहा इन दूसरी कैटेगरी वालों से जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लो, बाकी तो बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हमारी तो गेमिंग की अलग ही दुनिया थी।
1: 90 ml, 90 ml with Shruti.
0: मिर्ची पे ट्यून्डन हुआ आप, और आज गेमिंग का मतलब भले ही हाई एंड कंसोल्स, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और दुनिया भर के लोगों के साथ कंपटीशन हो, लेकिन 90s में तो भाई गेमिंग की अपनी ही दुनिया हुआ करती थी। एक छोटा सा वीडियो गेम पार्लर, हाथ में जॉयस्टिक, पॉकेट में कुछ कॉइन्स और बस हमारा मैदान तैयार। एंड यू नो सबसे मजेदार बात क्या होती थी, एक दोस्त खेल रहा होता था, बाकी सारे उसके पीछे खड़े होकर फ्री में कमेंट्री कर रहे होते थे, अरे जंप करा दे, अरे इधर से नहीं उधर से लेकर जा। और जैसे ही कोई गेम हारने वाला होता था ना, उसके मुंह पे एक डायलॉग फिक्स होता था, यार एक एक एक लास्ट चांस, बस लास्ट, पक्का पक्का लास्ट। ना ऑनलाइन फ्रेंड्स, ना लीडर बोर्ड, ना नोटिफिकेशन, बस स्क्रीन के सामने दोस्त और जीतने की जिद। और फिर कभी कभी इसका ओवरडोज हो जाए तो मम्मी कान पकड़ के आपकी सुताई भी लगाए। हम 90s किड्स के लिए ये गेमिंग जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा दोस्ती और कंपटीशन का बहाना हुआ करता था। वैसे आपने उस कंसोल पे सबसे ज्यादा कौन सा वाला गेम खेला है? मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें वहां कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: आपके अंदर के फिल्मी डिटेक्टिव को जगाने की है बारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So, मेरे शो पे एक नया गेम मैंने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ और उन प्रॉम्प्ट्स की मदद से आपको मूवी का नाम गेस करना होता है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है करण फ्रॉम बैंगलोर। आर यू रेडी?
3: या लेट मी ट्राई।
0: फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज क्रूज शिप, डबल थम डेब्यू, डबल रोल, एक पल का जीना।
3: होना प्यार है।
0: ग्रेट। कॉलेज कैंपस, आर्मी मेजर, साड़ी वाली प्रोफेसर, मिशन मिलाप।
3: शाहरुख खान एंड सुष्मिता सेन।
0: यस।
3: मैं हूँ ना।
0: गुड वन। कार्टून एनिमेशन, एनिमीज टर्न्ड लवर्स, बॉय वर्सेस गर्ल।
3: हम तुम।
0: यस। आपका अगला प्रॉम्प्ट है एलियन, बाइसिकल, बास्केटबॉल मैच, धूप।
3: कोई मिल गया।
0: हाँ जी। अगला है कश्मीर, ब्लाइंड गर्ल, टेररिस्ट, ट्रेजिक लव।
3: फना।
0: बहुत बढ़िया। एंड दिस इज द लास्ट वन, अरेंज्ड मैरिज, फायर एक्सीडेंट, जल।
3: सूरज बढ़ जाते हैं।
0: हिंदी एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो मस्त गेम खेला है आपने। तो इसी के साथ आप बने हैं आज के हमारे
1: फिल्मी डिटेक्टिव।
0: तो भाई ये डिटेक्टिव गिरी कल एक बार फिर से हाजिर होगी राइट हियर ऑन मिर्ची। बट अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स। मैं हूं श्रुति आपके साथ। इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The Mentalist Suhani Shah live.

0: इंग्लिश में तारीफ करते हुए ये ना कहिए नाइस टैटू, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए लो गई सरकारी नौकरी।
1: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची।

0: यार इतने खूबसूरत गाने के बाद मैं ये बोलना नहीं चाहता जो मेरे मन में बोलने को आ रहा है। रोमी श्रेय घोषाल की आवाज में गाना सुनाया किसने? मस्त मौला गौरव ने। मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04 और बताएंगे मेरे मन में क्या आ रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: कितना खूबसूरत गाना है, वारू वारू मैं तुझ पे, तेरे बिना लागे मन मोरा, दिमाग खराब मत कर तू मेरा, ज्यादा मुंह चला मत तू अपना। यही तो होता है शादी के बाद, ये सब भाई पहले वाली फीलिंग अलग ही होती है। लेकिन अगर आप वो वाले हैं जो अभी भी अपने लाइफ में इस तरह के रोमांस रखते हैं, इस तरह के गानों को अपनी रील्स पर डालते हैं, तो आपको नजर ना लगे बलैया ले लो। फिलहाल तो आ गया मस्त मौला गौरव लेकर शाम शानदार, ढेर सारी बातों को करेंगे यहाँ धुआंधार। एंड आज से खत्म हो गया है वो बाहर काम करने वाला जो बैन होता है वो। ये सब कुछ बदलते मौसम में कतर के क्या हालात है, सब कुछ बताएंगे। बस आप आ गए, अब अगले 4 घंटे हम यही सब बताएंगे 89.6 मिर्ची 1 पर। शाम शानदार, मिर्ची इट्स ऑन।

0: Pepe Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Navid bala burga. Milchi burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहा है?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं,
2: हाँ, किससे बात कर रहे
3: हैं? मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर
3: नकली तरीके से. क्या
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात
3: नहीं
2: कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: नहीं,
3: बात नहीं तो तमीज सीख ले.
2: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे. आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: क्या मजदूर भाइयों, आपको तो पता लग ही गया कि खत्म हो गया मैं। ये एक तरह से बदलते मौसम का भी खबर होती है और एक तरह से हमारे कतर का ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू होता है। जून 1 से 15 सितंबर तक जो आउटडोर में वर्क बैन लगता है लेबर भाइयों के लिए, वो अब खत्म हो गया। #974 हम आपको बताना चाहेंगे कि कतर में जो समर आउटडोर वर्किंग आवर्स पे बैन लगता है, यानी कि सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक, वो जून 1 से 15 सितंबर तक लगता है और आज उसका आखिरी दिन था। अब मजदूर भाई लोग अपनी पुरानी टाइमिंग पे लौट आएंगे एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से भी खुश होंगे कि नाइट ड्यूटी के आवर्स भी कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जरूर एम्प्लॉयर्स को यह याद दिलाया कि इवन आफ्टर दिस बैन आवर्स इज डन, हमें उनकी सेफ्टी का, उनके हेल्थ का ख्याल रखना है एंड इसीलिए उनके लिए बहुत तरीके से रहना है। इतने मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि जो भी वर्कर्स हैं उन्हें अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स को, प्रिवेंटिव मेजर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है एंड कोशिश यही करनी है कि जब भी जाएं पर्याप्त पानी वानी पी के जाएं ताकि हीट स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। मौसम पूरी तरीके से नहीं बदला है लेकिन कतर में ये एक ट्रेडिशन है यार, जून 1 से 15 सितंबर तक मजदूर भाई लोग बाहर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, उस टाइम वो आराम करते हैं और इसके लिए हुकूमत को दिल से सलाम जो इतना सोचती है उन लोगों के लिए जिनके कंधों पे कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कतर के सड़कों की, हर चीज की जिम्मेदारी है, उनके लिए इतना सोचा जाता है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड आई एम श्योर गर्मी खत्म हो गई लेकिन गाने से एक बार फिर से हम थोड़ा बढ़ाएंगे। भाषा भाई जरा गा दो एक आखिरी बार, क्योंकि मेरा ये मानना आउटडोर वर्क आवर खत्म हो गया, अब अगले ही साल आएगा मिर्ची सॉन्ग।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।

0: ना तो सोने का खोना चौथा है, ना किसी का गिरा हुआ सोना पाना रखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? जब चीज इतनी महंगी हो तो इंसान की नीयत डोली जाती है। बात करो मैं गोल्ड की, हाँ जी उसको लेकर कितनी सारी बातें होती है ना बचपन में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना दाम हो गया कि अब बस बात ही कर पा रहे हो।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें तो यस, आप जब भी खरीदें एकदम प्योरिटी के साथ खरीदें, और ऐसा ही स्विस 24 कैरेट प्योरिटी के साथ सर्टिफाइड गोल्ड आपको मिलता है पैम्प 1 ग्राम एट अल फरदान एक्सचेंज, जहां पर पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 576 कतरी रियाल है, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2699 कतरी रियाल, पैम्प 10 ग्राम 5329 कतरी रियाल, एंड अगर हम 1 आउंस की बात करें तो ये फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 16470 में, एंड वही पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज 61151 कतरी रियाल। एंड ये सारे सर्टिफाइड कह सकते 24 कैरेट स्विट्जरलैंड वाले एकदम बेस्ट तरीन गोल्ड लेके आप जब रखोगे तो आने वाले टाइम में इसके रिटर्न्स भी बड़े मिलेंगे। तो पैसे हैं तो जुटाते रहो और सोना खरीद खरीद के इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो। मिर्ची इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: रेडी?
5: रेडी।
0: टू लर्न?
5: यस।
0: टू प्ले?
5: एब्सोल्युटली।
0: टू ग्रो?
5: विद मेजराती।
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: The show was absolutely amazing.
8: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: तो बात कर रहे थे इस लड़की की इस गाने में जिसमें दंगल ही दंगल था, लेकिन मैं कहता हूँ मौसम भी धाकड़ है। अमा यार सूरज चाचू, किस बात की इतनी गर्मी दिखाते हो यार हैं? कल तक तो ठीक थे, 47 नीचे चले गए, आज फिर से 42 आ गए।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब लेकिन सूरज जाजू की चमकान मैक्सिमम पे चाहे जितनी पहुंचे, मिनिमम अब 30s के नीचे आ गया। यस, आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, राइट नाउ 39 से 38 की तरफ लुढ़कता हुआ पारा, दिन का मिनिमम 28 जाएगा, यानी कि देर रात हम ये 28 डिग्री वाले टेम्परेचर को फील कर लेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है दोस्तों, एंड हमें और आपको ख्याल रखना है कि एकदम से नहीं माहौल बनाने लगना है कि हो गई गर्मी खत्म। हालांकि ह्यूमिडिटी कल से कम आज होगी, 89.6 मिर्ची 1 पर। मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा, बदल रहा है मौसम, जल्दी देखना ठीक हो जाएगा सब कुछ। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और Baba Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में. है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's out.
0: Bollywood Bold Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, बोल्डा
1: Only on मिर्ची It's hot.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: The Mentalist Suhani Shah live.

0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
1: अगर आपका दोस्त आपको बहुत ज्ञान दे रहा है तो इंग्लिश में उसे ये ना कहिए माइंड योर ओन बिजनेस, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए चल बे अपने बाप को मत सिखा।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची।

0: कई राघव चैतन्य महमूद की आवाज में एक गाना माशूका सुनाया आपके आशिक नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपसे पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से प्यार कर रहा हूँ और आपका प्यार भरपूर मिलता है। 5:03 हुए।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आजकल आप मेरा मतलब अपना प्यार लुटाते हैं मेरे इस सेगमेंट पे जिसका नाम है पहचान कौन। में एक आवाज सुनाता हूँ और आपसे कहता हूँ बताओ ये कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है।
3: कि मैंने ठान ली थी कि लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती ये बनेगी ये मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी। यू नो आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए क्योंकि
0: हाँ जी क्योंकि इसके आगे नहीं बताएंगे बस आपको बताना है कि ये कौन सी एक्ट्रेस है जिनकी आवाज यहाँ आप सुन रहे हैं।
3: कि मैंने ठान ली थी कि लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती ये बनेगी ये मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी। यू नो आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए क्योंकि
0: 5:00 पर आपको ये आवाज पहचाननी है कि ये किसकी है और क्या करके दिखाना चाह रही थी। आइए एक बार आखिरी बार सुने फिर आपके दिमाग का टेस्ट शुरू।
3: कि मैंने ठान ली थी कि लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती ये बनेगी ये मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी। यू नो आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए
0: क्योंकि के आगे मैंने कुछ नहीं बताया यहीं पर खत्म कर दिया। अब आपको बताना है 5:00 पे कि गौरव ये जो आवाज तुम प्ले कर रहे हो ये फला हीरोइन की है। अब हिंट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत

बहुत सारे सोशल इश्यूज पे बनी फिल्म का भी हिस्सा रही है। 5000 1896 मस्ट फॉलो गौरव आपका इंतजार कर रहा है। आपको जवाब को आपको वॉइस नोट में भेज देना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ड्राइव सेफ एंड जरूरी नहीं है, आप जरूर साइड में पहले गाड़ी लगाओ उसके बाद ही जवाब दो, लेकिन 5000 1896 पर वॉइस नोट में ये जो आवाज मैंने आज आपको सुनाई है ये कौन सी अदाकारा की है, एंड मैंने हिंट ये भी दिया कि एक्ट्रेस है, एंड बड़ी बात यह है सोशल कॉज पे बहुत सारी फिल्में की हैं। इस उम्मीद में कि मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और रातों में आना वाले गाने की तरफ अमित त्रिवेदी ले जा

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मेरी क्लास के एक टॉपर तो है यूसुफ भाई, जो हमेशा एकदम जल्दी से जवाब भेजते हैं और बिल्कुल सही भेजते हैं, लेकिन आज आपका टेस्ट है। बताइए ये किसकी आवाज है जरा।
1: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती नहीं कर सकती, ये बनेगी ये, मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: 5000196 पर आज पहचान कौन नहीं है जिस भी एक्ट्रेस की आवाज है, ये सोशल कॉज पर भी फिल्में कर चुकी हैं एंड शानदार अदाकारा हैं, और यूसुफ भाई सबसे पहले हैं जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया, लेकिन मैं अभी आवाज नहीं आपको आज मौका दे रहा हूँ।
1: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती नहीं कर सकती, ये बनेगी ये, मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: 5000196 पे नंबर है। अब अगर आप जवाब दे पा रहे हैं सही तो मैं बताऊंगा, गलत तो भी बताऊंगा, लेकिन 5000196 पर एक मौका है, जल्दी वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दो कि गौरव ये अदाकारा ये लग रही है, सोशल कॉज पर फिल्में की हैं, शानदार अदाकारा है और पहली फिल्म में काफी ज्यादा वजन के साथ माहौल बनाया था। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, मिर्ची इज हॉट।
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी कौन
3: हेलो किससे
2: बात करनी है
3: भैया, किससे बात करनी है,
2: किससे बात करनी है
3: भैया, नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला
3: पागल
2: पता नहीं
3: कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा था,
4: इको आ रहा है इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो जैन साले भाई आपको मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया,
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया क्यों परेशान
2: कर रहा है किसी को, पागल हो गया क्या यार, पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है
3: भैया,
2: अबे पागल हो गया क्या यार, महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास, पागल कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया, क्या नाम है सर आपका, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, रवि रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें इको नहीं आएगी,
3: कुकड़ू
4: भाई कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने भाई, आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ, डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ, there's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को, इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: शेर नहीं, आज तो भीगी बिल्ली लग रहे हैं सब सब फंस गए हैं।
1: मस्त मौला गौरव
0: 89.6 मिर्ची वन पर मेरे साथ इस घंटे आप खेलते हो। एक आवाज सुनाता हूँ और आपको बतानी होती है वो आवाज किसकी है, और आज की ये आवाज कुछ यूं है।
2: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती, ये बनेगी ये। मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: बस यही पूछा था कि बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी आवाज मैंने यहाँ प्ले की है। जवाब आए हैं।
3: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, यूसुफ विद्यो। हाँ, ये आवाज है भूमि पेडनेकर की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
4: सर गुड इवनिंग सर, एक्टर का नाम है राखी सावन। मैं राम दिनेश यादव बोल रहा हूँ। एक्टर का नाम है राखी सावन। मैं राम दिनेश यादव बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी यादव जी, राखी सावंत का तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार फिर से सुनिए, बताइए किसकी आवाज लग रही है।
2: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती, ये बनेगी ये। मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: 5000196 पर एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ। अगर आपको लग गया है कि ये तो फलाने की आवाज है तो काहे बैठे हैं, बताओ। 5000196 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है आपके जवाब का। आपका जवाब जैसे ही आ जाएगा हम सबको सुना देंगे, और अगली बार सच में बता देंगे कि ये कौन सी अदाकारा है जिसकी आवाज आप यहाँ सुन रहे हो। एक आखिरी बार फिर से ध्यान से सुनो।
2: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती, ये बनेगी ये। मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: एंड 5000196 पर एक आखिरी मौका आपके पास। वॉइस नोट में अपना जवाब भेजो कि गौरव ये तो फलानी एक्ट्रेस लग रही है। हिंट में मैंने ये कहा है ये सोशल कॉज पे फिल्में कर चुकी हैं, और पहली फिल्म में इन्होंने बड़ी वजनदार एक्टिंग की थी। वजनदार, हाँ जी। 89.6 मिर्ची वाले थॉट तू है।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: चलिए जी, गाना खत्म हुआ, लुटपुट गया और आपके साथ हमेशा हंसते लौटने वाला नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: यस, मैं आ गया और इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम इस घंटे खेलते हैं
2: पहचान कौन,
0: और पहचान कौन में हम एक आवाज सुनाते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ ये आवाज किसकी है। और आज की आवाज कुछ यूं थी।
3: मैंने ठान ली थी, लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती, ये बनेगी ये। मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, यू नो, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफी लड़कियों के लिए, क्योंकि
0: एंड किसी ने जवाब दिया राखी सावंत, लेकिन क्लास के टॉपर मैंने हमेशा कहा यूसुफ भाई हमेशा जवाब देते हैं, आज भी उनका जवाब आया था सबसे पहले।
4: गुड इवनिंग गौरव, यूसुफ विद यू। हाँ, ये आवाज है भूमि पेडनेकर की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
5: यस, शी इज देन भूमि पेडनेकर। ओके, भूमि पेडनेकर।
6: ओके, हेलो सर, ये दम लगा के है शा मूवी की एक्ट्रेस है भूमि पेडनेकर।
7: हेलो गौरव भाई, मैं लव सा बात कर रहा हूँ। ये आवाज थी भूमि पेडनेकर की और इसकी पहली मूवी शायद दम लगा के हिस्सा ऐसा कुछ था।
0: हाँ जी, इसके अलावा मैं राजीव भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा, रोहन को थैंक यू, इसके अलावा स्वप्निल जिन्होंने कहा है इट्स दम लगा के हाइशा एक्ट्रेस। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का गलत जवाब भी आया है, बहुत सारे लोगों ने इनकी आवाज़ को शिल्पा शेट्टी की आवाज़ से जोड़ दिया है। राइट आंसर इज भूमि पेडनेकर। यस, ये भूमि पेडनेकर की ही वॉइस थी जो मैंने यहाँ आज प्ले की थी और वो अपने वजन को लेकर ये बात कह रही थी, एंड उनका ये मानना है कि अगर किसी ने कभी बॉडी शेमिंग की है तो उसके लिए कभी वजन मत घटाइएगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना खत्म हुआ और आपके साथ फिर से जुड़ गया। कैसी फीलिंग होती है जब आपके दोस्त यार वीकेंड पे जाकर आउटिंग कर रहे होते हैं और आप यही सोच रहे होते हैं, काश मैंने उस हफ्ते में थोड़े पैसे कम खर्च किए होते तो इस हफ्ते भी वीकेंड आउटिंग चले जाते। पहले दो हफ्ते हमारी जिंदगी में गजब गुजरते, लेकिन जब 15 तारीख आ जाती है तो पैसे हमें टाटा बाय करके सस्ते में निकल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास बचे हैं तो रेट्स है ना। ऐसे में मस्फोरो गौरव आपको बताना चाहेगा, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस एक बार फिर से ऊपर की तरफ 26.28 INR 26.28 भारतीय मुद्रा। वहीं वन कतरी रियाल के बदले अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीस की 90.30, पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.13 पाकिस्तान रुपीस मिल जाएंगे। तपाई को नेपाल रुपीस का रेट चौदह जो एक कतरी रियाल के बहिनी 41.95 का रेट 41.95 मिल रहा है नेपाल रुपीस को। अगर घर भेजने लाई तो सही टाइम छो। वही बंधु बांग्लादेशी टका दादा, अगर आप एक्टा कतरी रियाल के बदले बंधु टका चाहता है तो मिलेगा बांग्लादेशी टका 33.78 तो 33.78 बांग्लादेशी टका का रेट अच्छे। मस्त मोलो गौरव के साथ ये था करेंसी अपडेट। मिर्ची हॉट अच्छे तो

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन। बता बेटा, सवाल क्या है?
1: क्या बताऊं अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
0: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking.

0: 10 साल हो गए मेरा इस गाने से जो रिश्ता है वो बना हुआ है। कुछ गाने स्पेशल होते हैं मेरे लिए, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी गाने को मैंने सबसे पहली बार, जैसे ये सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मैंने ही प्लेस किया था बनारस में, इंडिया में, जब मैं पहली बार आरजे बना था। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 6:04 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए देवी और सजनों बारी आ गई है, इस घंटे खेलेंगे और आपके कान क्या थोड़ी परीक्षा ले लेंगे।
1: गानों की मिक्सी
0: दो गाने मैंने साथ में पीस दिए, आपको बताना है कौन कौन से।

बस बस बस, अब इतने में दोनों गाने याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आप इतने भी पुराने नहीं हैं, ये गाने तो काफी नए हैं और आपके दिमाग को अभी तक तो ये जरूर कह रहे हैं, कह रहे पता है यार, पता है ये वाला तो हम लोगों ने सुना हुआ है ना, ये वाला तो सुना हुआ है ना, तो एक बार फिर से सुनो और बताओ कौन से दो गाने हैं।

बस बस बस 5000196 पर मस्ट फॉलो गौरव आपके जवाबों का इंतजार कर रहा है 5000196। अगर ये दोनों गाने याद आ गए तो बता दो मिर्ची थॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, poskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. La firma la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से, बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको।
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर
4: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: शहलहादा जानवी श्री मानकर की आवाज में ये गाना हमने सुनाया है। हैंडसम गाना नहीं सुना रहे हैं, इस घंटे गानों की मिक्सी चला रहे हैं, दो गानों को एकदम साथ में पीस दिया है,
1: गानों की मिक्सी
0: और दो गानों को मिस कर यानी कि पीस कर एक साथ मैंने जो गाने बनाए हैं वो कुछ यूं हैं।

जो भी बताएगा उसको हमारी तरफ से इनाम मिल जाएगा। इनाम में हम आपको देंगे चमचमाते दांतों के लिए यस किम्स हेल्थ केयर का वो वाउचर जो आपके डेंटल स्केलिंग को बढ़ा देगा। चलिए जी, इस उम्मीद में कि किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर के इस डेंटल स्केलिंग वाले वाउचर को जीतने के लिए आप मेहनत करके बताएंगे कि ये कौन से दो गाने हैं जो मैंने अभी अभी आपको सुनाए। 5000196 पर जिसका सबसे पहले जवाब आएगा ये वाउचर उसी का हो जाएगा। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

देंगे तेरे दांत विद मिर्ची के स्पेशल गिफ्ट खास। एक बार फिर से जरा नाम लो, मिस हो गया यार। मस्त मौला गौरव आपके साथ है और मेरे साथ चल रहा है इस घंटे गानों के मिक्सी कॉन्टेस्ट, जहां पर आज मैं विनर को देने वाला हूं किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर की तरफ से डेंटल स्केलिंग वाउचर, यानी कि आपके दांतों में एक अलग सी चमक आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना था और आज का सवाल बड़ा ही सिंपल था, गानों की मिक्सिंग की थी और बताना था कि ये कौन से दो गाने मिक्स्ड हैं।

0: Gaye, gaye. And the answer is?
1: Hi, my name is Aisha, and the answer is I am the best, and Chandu ke chacha ne Chandu ke chacha.
0: Yes! आसिफ भाई आप एक गाने में चूक गए थे, आपका भी जवाब सही था लेकिन एक गाना आपने गलत बताया है। चंदू के चाचा को आपने कुछ तो हनी सिंह का गाना लिख दिया है लेकिन ऐसा नहीं है। आयशा यू आर दी लकी विनर टुडे, आपको मिलता है किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर की तरफ से डेंटल स्केलिंग वाउचर एंड मिर्ची पर मेरे साथ कॉन्टेस्ट खेलने वालों की लॉटरी ऐसे ही लगती है। बस सुनते रहा करो और मेरे साथ इंजॉय करते रहा करो मिर्ची। इट्स हॉट

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: अरिजीत सिंह, जसलीन रॉयल, हीरिये हीरिये आ और आ रही है सुहानी। 89.6 मिर्ची वन पर मस्ट फॉलो गौरव आपको बताना चाहता है, दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस शाम का हिस्सा बनते हैं, इमेजिन कीजिए आप किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा माइंड रीड कर पाने वाली लड़की को देख पाएंगे, एंड 7 साल की छोटी उम्र में पहला अपना मैजिक शो स्टेज पे किया है और कभी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं गई, 7 साल की उम्र से ही अपनी प्रैक्टिस में लग गई। अब जिसने साधना की तरह एकदम इस विद्या को हासिल किया है वो देखने लायक तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया में अपने डंके को बजाकर हमारे कतर की तरफ बढ़ रही हैं, एंड 25th ऑफ सितंबर QNCC में सुहानी शाह होंगी। एंड सुहानी शाह के शो की खास बात यह है कि हमने इसमें बॉलीवुड का तड़का भी लगाया, जहां पर सिंगर चरण एंड डांस करने वाली आशी बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देंगी, एंड शी इज अ वेरी रेनाउंड डांसर। बड़े बड़े सिंगर्स गुरु रंधावा से लेकर बादशाह के गानों में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, एंड मास्क गर्ल बोलकर और भी ज्यादा पॉपुलर थी। इंडियन आइडल के लेटेस्ट सीजन में वो पहुंची थी अपने इसी गाने को प्रमोट करने। तो चरण और आशी एक साथ जिस गाने में आए वो आज यहां मिर्ची पर मैं प्ले करने जा रहा हूं। ओनली 89.6 मिर्ची वन एक्सक्लूसिव फॉर द फर्स्ट टाइम मिर्ची इट्स हॉट।
1: वो एक शख्स थी और हम दो बर्बादियां।

ऐसा है तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: राठौड़ की आवाज में गाना बैंगल्स और मिर्ची घड़ी का टाइम 7:03।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: कतर की ये परंपरा है एंड इस ट्रेडिशन से मौसम के अंदाज भी पता चलता है। हाँ जी, 1 जून से 15 सितंबर तक हमारे कतर में आउटडोर में मजदूर भाई लोग काम नहीं करते हैं, सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। और 15 सितंबर के साथ अब ये बैन खत्म हो गया है। मजदूर भाई लोग अब अपने पुराने शिफ्ट टाइमिंग पर वापस लौट आएंगे। दोपहर के टाइम भी वो काम कर पाएंगे, लेकिन इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने याद दिलाया कि सभी एम्प्लॉयर्स को ये इंश्योर करना होगा कि उनकी सेफ्टी के लिए वो प्रॉपर मेजर ले रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए वो एकदम केयर कर रहे हैं। एंड मजदूर भाइयों से भी यही कहा गया है कि भाई अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखिए। तो आउटडोर वर्किंग आवर्स जो June 1 से June 15 तक बैन होते हैं, उस पर रोक हट चुकी है। अब आपको ये मजदूर भाई लोग काम करते दिखाई देंगे, क्योंकि इस दौरान जब ये बैन लगता है काफी ज्यादा हीट रिलेटेड रिस्क रहता है, और उनकी ही चिंता करते हुए ये बैन लगता है। दोपहर के टाइम मजदूर भाई लोग आराम करते हैं एंड खुले में काम बिल्कुल नहीं करते हैं। और एक तरह से ये कतर में एक ट्रेडिशन सा है जो मैं पहले साल से देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ। और इतना ही कहना चाहूंगा इसके लिए यहाँ की हुकूमत को दिल से सलाम, जो मजदूर भाइयों की सेहत के लिए भी इतना ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर तो कतर की बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर यहाँ की खूबसूरत सड़कों का, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस उम्मीद से कि जब हम भी ज्यादा पढ़ाई करते थे कोई हमारे इतना ख्याल रखता तो अच्छा लगता। हम भी मजदूर की तरह दिन दिन भर पढ़ते थे, पर कोई कभी नहीं कहता था कि दोपहर के टाइम थोड़ा सो जाओ। मम्मी अलग से मारती थी, भूल ही नहीं पाते। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: लो इधर आ गया सूरज चाचू को हम पे तरस आ गया और हमारे लिए बीच पे जाने का मौसम। बहुत दिन से कह रहे थे ना आप बीच पे नहीं जा पा रहे हो, अब आउटिंग कैसे करें, तो आउटिंग का प्लान हो गया और बीच पे एक्टिविटी लौट आई है।
1: #974974
0: यस, अब आप अपने वीकेंड पर जा सकते हो फ्लोटीज फेस्टिवल में। इस फ्राइडे सितंबर 18th मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी लेकर आ रही है 974 बीच पर फ्लोटीज फेस्टिवल। एंड खास बात यह है कि बिल्कुल सुपर फन फैमिली डे आउटिंग होने वाली है आपकी। सेफ वाइब रहेगा, अमेजिंग बीच का फील मिलेगा और पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहेगा। सबसे खास बात यह है कि बच्चों और एडल्ट्स के लिए बकायदा एक फ्री स्विमिंग जोन होगा। इसके अलावा लेडीज ओनली एरिया भी बनाया जाएगा। लाइफगार्ड्स जो है वो फुल टाइम यहाँ पर अवेलेबल होंगे। शावर फैसिलिटीज भी होगी आपके लिए। सब कुछ एकदम आसान किया गया है। एंड द चार्जेस आर किड्स अंडर 14 कतरी रियाल 15, एडल्ट्स 35 कतरी रियाल, और 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों तुम्हारी तो फ्री एंट्री है। तो कुल मिलाकर फ्लोटीज अपने पैक कर लो और इस फ्लोटीज फेस्टिवल में शामिल हो जाओ, जहां पर सनस्क्रीन लगाओ, 974 बीच पे जाओ एंड अपने आप को एक बीच वाली आउटिंग दे दो। इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, अब फाइनली आने वाले टाइम में ऐसी बीच आउटिंग और होने वाली है। ये तो बस शुरुआत है, एंजॉय करो। और आज ब्लू है पानी, पानी वाली फीलिंग लो। मिर्ची थॉट

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड मिलता है,
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान जाते हैं, आज चमकदार मान जाते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा। सर आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com. How dare you call me?
2: Okay, okay, सर आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी कैटेगरी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6 मिर्ची।

0: कौन कहता है कि कतर रेल की दोहा मेट्रो लुसेल ट्रैम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। भैया ये एंटरटेनमेंट का भी पूरा डोज है, तभी तो 6-6 अवार्ड अपने नाम किए।
1: #974974
0: कतर रेल के बहुत सारे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट का लोहा जो है वो दुनिया ने मान लिया और वर्ल्ड फेमस 2026 टेली अवार्ड में कतर रेल ने पूरे 6 अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए। इसमें अरब कप का सुपर कूल वीडियो बनाया गया, चेस टूर्नामेंट की शॉर्ट फिल्म थी, ऑडियंस ने इसको इतना पसंद किया कि इन्हें तो सिल्वर मिला और ब्रॉन्ज अवार्ड भी मिला है। इसके साथ साथ जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए हमें और भी ढेर सारे अवार्ड मिले, लेकिन एक और अवार्ड मिला जो मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा। और इंपॉर्टेंट खास अवार्ड जो कतर रेल को मिला है वो इस बात के लिए मिला है कि वीडियोज में सोशल अवेयरनेस, इको फ्रेंडली ट्रेवल और सोशल नीड्स वाले लोगों के लिए इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने अब इसका लोहा मान लिया, टेली अवार्ड्स में 6-6 अवार्ड आ गए। और ये बताता है कि अगली बार जब आप मेट्रो या लुसेल ट्रैम में सफर कीजिए तो ये समझिए कि आप वर्ल्ड क्लास राइड का आनंद ले रहे हैं और एक ऐसे लोगों के साथ हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं और आपको डिजिटली इतना एंटरटेन करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग अब इनको पसंद कर रहे हैं। वेल, बाकी का जलवा तो मेट्रो दिस वे से फीफा वर्ल्ड कप के टाइम ही बन गया था। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

सुनिधि चौहान, ये गाना पुष्पा का सुनाया किसने? लेकिन हमको लगता है पुष्पा अगर हमारी सुहानी के सामने आया तो वो भी झुक जाएगा, कहेगा मत खोल मेरे दिमाग के राज। फिलहाल दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस इज हैपनिंग एट QNCC ऑन 25th of September, जिसकी टिकट्स आपको जल्दी से बुक कर लेनी है। ट्रस्ट मी, एक एंटरटेनिंग शाम होने वाली है जहां पर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। बहुत कॉन्सर्ट देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग शोज देखे होंगे, क्लब पार्टीज में गए होंगे, लेकिन ये मेंटली सुहानी शाह के साथ ऐसे घंटे बीतने वाले जिसमें आप इतना कुछ देख के शॉक्ड होगे, कहोगे कैसे हो रहा है। यही तो है ये दुनिया मेंटलिस्ट की। तो अगर अभी तक आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, दिस इज द राइट टाइम। कतर पहली बार लेकर आ रहे हैं हम, एंड द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, एंड दिस इज हैपनिंग। एंड आपको इसका हिस्सा जरूर बनना है, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो। एससीटी स्नूनू पर अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर पर 30 कतरी रियाल का कैशबैक है, एंड साथ ही साथ क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट पर भी ये टिकट्स मिल रही है। मस्त बोलोग और इतने कहेगा आप तो आओ, अपने दोस्तों को लाओ, तभी तो मजा आएगा जब आपके किसी दोस्त का राज वहां पर्दाफाश हो जाएगा। 89.6 मिर्ची 1 पर मी सिंह टाटा मोबाइल लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी, क्या बात है, क्या लग रहे हो। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग गाना।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: The show was absolutely amazing.
3: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: The Mentalist Suhani Shah live.

0: 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
1: बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और बड़ा ही एक अमेजिंग सा वाक्या हुआ। ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी लेकर नहीं आया था, तो एक ऑटो बुक किया। ऑटो में बैठा तो उन्होंने दिख गया उन्हें कि रेडियो मिर्ची से हूँ, क्योंकि बुक वहीं से करी थी। तो कहने लगे, अरे अच्छा आप आरजे हैं? उसके बाद अंग्रेजी में बात करने लगे। मैंने बोला, अरे अच्छा जी, तो बातचीत करी? तो उन्होंने बताया कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है और मेरे पास ये डिग्री है। डिग्री गिनाने लगे। मैंने बोला, क्या हुआ फिर, आप ऑटो चला रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, जिंदगी के हालात हमें यहाँ पे ले आए हैं छोटे, अब क्या सुनाए तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी। ज्यादा तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाला माधव राम जौहर साहब का एक शेर याद आ गया मुझे उनकी बात सुन के। कह गए कि जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ऐ आसमान मैं भी कभी आफ्ताब था। आफ्ताब बोले तो सन है ना। जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ऐ आसमान मैं भी कभी आफ्ताब था। तो कई बार जब आप प्रिज्यूम करते हैं कि कोई इंसान क्या हो सकता है, अगर आप उसकी जिंदगी को ना जानते हो तो प्रिज्यूम ना ही करना बेहतर है। रेडियो नो मिर्ची ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Energy.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Burka, burka. Nafiyat wala burka. Mirchi burka.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी।
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे।
4: सही बात कह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ।
3: हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
3: हेलो,
4: हाँ बोलिए।
3: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं,
3: रहे हैं।
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
3: वो तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
4: नहीं, नहीं, तमीज सीखिए। नहीं, तमीज
3: नहीं, नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
4: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आप कताशी रूबरू कराए आपको हमारे आज के फनकार हमारे आज के शायर कुमार पाशी साहब से। अब ये बिल्कुल मेरा ही पिछला जन्म हो सकते हैं, 1935 से 1992 तक जिए कुमार पाशी साहब, दिल्ली में रहे और बड़े ही प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट पोएट रहे, जो कि एक लिटरेरी मैगजीन आती थी सतूर, उसके भी संपादक रहे। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है उनका जो मुझे बड़ा पसंद है। लिखते हैं कि कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, जाने वाले दोस्त की अब एक यही निशानी बाकी है। वाह वाह वाह वाह। और कई बार ऐसी होता है यार, शख्स तो चला जाता है और आप उसके बारे में जो लिख के छोड़ गए होते हैं, है ना, वही बच जाता है। एक कहानी खत्म हुई है, एक कहानी बाकी है, मैं बेशक मिसमार हूं लेकिन मेरा सानी बाकी है। कुमार पाशी साहब की बड़ी खूबसूरत गजल। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। एग्जैक्टली राइट, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई. उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली. लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए.
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी. और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और एक शख्स से मुलाकात हुई, बड़े प्रैक्टिकल टाइप के इंसान थे, और थोड़ी देर बैठे तो हमें ज्ञान देने लगे। कह रहे थे कि अरे क्या आप ये उर्दू अदब शायरी इश्क विश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया है, गला रेत देती है ये दुनिया, ऐसा वैसा, यू नो, ज्ञान दे रहे थे बेसिकली, है ना। तो जहन में हमारे एक शेर तो गौंधा, और जाते जाते हमने वो शेर उन्हें चिपका ही दिया। समीना राजा साहिबा का शेर है, आपको नजर कर रहे हैं। कहती हैं कि शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, जिंदा रहने के लिए कोई बहाना ही सही। तो भाई हर कोई अपने अपने बहाने से जी रहा है, क्यों उनकी जिंदगी में जाके टांग अड़ानी है कि नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और आ गया है मेरा पसंदीदा हिस्सा
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th सेंचुरी में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सब की जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

अगर आपको ये नगमा पसंद आया हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, और वहां आपको मिल जाएंगी मेरी आवाज में कई सारी गजलें, कई सारे ऐसे ही नगमे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
2: विद तनिष्क्स बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट तनिष्क लूडू हाइपरमार्केट डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क ज्वेलरी बाइंग मेड इजीियर। टीएनसी सप्लाई। Oh, oh, oh.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 ईयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कम बैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वॉज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे, वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
2: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

स्टोरी है सागर की. इट वॉज अ कम बैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की. 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी. मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था. आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कम बैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वॉज डायरेक्टिंग द फिल्म. अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे बल्कि पता है कौन थे? एम एफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एम एफ हुसैन साहब. वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयर फुट नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे. पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया. वापस आओ और भी करेंगे.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार। आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
5: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट पका।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
9: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाटिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाटिया ने बॉब भी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई। और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
4: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: 89.6
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6
1: It's hot.

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो,
3: इस दैट मिस्टर विपुल?
2: यस
3: मिस्टर विपुल, हाय आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सूटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: ओके, मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com. हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाडिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचम दा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाडिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिम्पल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम यू नो पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफकोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: फकत फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा। और

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, जाने का टाइम याने लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है, और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनी वे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।